0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மேன் மனோஜ். वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देश के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஆஜ் சவேரி, செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जिस क्षण आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, उस क्षण आप जीना भी छोड़ देते हैं। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
2: नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू आज सवेरे, द डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम वेयर वी कीप यू इन्फॉर्म्ड, इंस्पायर्ड एंड कनेक्टेड एज यू बिगिन द डे। Well, we'll bring you the day's top national and international headlines with sports updates as well, along with major metro city stories. We'll also take a walk through history, revisiting events that shaped the world. We'll remember distinguished personalities who were born on this day and those whose legacy continues to inspire us after their passing. So wherever you are listening us from, at home, on your morning walk or on your way to work, stay with us for the next 30 minutes. First, we are beginning with the headlines.
1: Gigi.
2: So first one, Indian Space Research Organization ISRO says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea. This is considered one of the most important crew safety requirements. The second test, it involved examining the separation of the umbilical mechanism. This serves as a link between the crew module where astronauts live and the service module which provides power and propulsion. Now the third test, this validated the structural integrity of the crew module during the apex

0: cover separation event. So three tests, three major tests of the Gaganyaan crew module systems.
1: कोलंबिया के बुकारा मंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में पांच भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: छप्पनवे अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: The government has refuted a fake image circulating on social media claiming that ethanol blended petrol can cause problems in the vehicle's fuel tank. So the Press Information Bureau's fact check unit has termed the claim as false. It said the Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that E20 petrol supplied by oil marketing companies conforms to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards. The ministry said ethanol and petrol are completely miscible and do not separate or form layers when the fuel meets the prescribed standards. It further assured that ethanol blended petrol supplied in India adheres to stringent quality standards and undergoes rigorous testing before being made available to consumers.
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। कार्यालय ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर एथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है।
0: महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अनाउंस्ड दैट 145 रेलवे ओवरब्रिजेस दे विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस महाराष्ट्र ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स टू एलिमिनेट रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स, सेकेंडली टू एनहांस रोड सेफ्टी। So he highlighted the challenges involved in railway bridge construction. Mr. Fadnavis, he said, the state has made systematic and rapid progress in executing complex railway infrastructure projects in Nagpur and Mumbai.
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्रों, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। सम्मेलन में भारत और विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस आयोजन के दौरान कई रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
0: So Manoj, there is a youth campaign which will be organized and youth aged from 15 to 29 years can participate in various programs, especially, you know, divided in 5 categories, dance, music, reel and short film, Nukkar Natak and slam poetry. So the Ministry of Youth Affairs and Sports has launched the next phase of the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign. And according to the ministry, the registrations will begin today at My Bharat portal. So, youth aged from 15 to 29 years, listen intently. District level competitions will be held from 24th to 27th of July, followed by state level rounds. So, state winners will compete in the national finale at the National Youth Summit in New Delhi on 12th and 13th of next month. So, I told you, you can participate in 5 categories, dance, music, third one.

0: One is reel and short film. Fourth, Nukkar Natak. Fifth, slam poetry. So entries can be submitted in either Hindi, English or any regional language. So great chance for youth to shine.
1: जी जी जी और अगली खबर है मणिपुर में जिला प्रशासन और विष्णुपुर जिला ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित प्रथम विष्णुपुर जिला ओलंपिक खेल 2026 का कल समापन हो गया। समापन समारोह विष्णुपुर जिले के मोइरांग स्थित चेंगई लाम्पक में आयोजित किया गया, जिसमें मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री गोविंद दास कुंथौजम और विधायकों ने भागीदारी की। 5 दिवसीय खेलों में 16 स्पर्धाओं में लगभग 1500 एथलीटों ने भाग लिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और विधायकों के साथ मिलकर विभिन्न खेल विधाओं के विजेताओं को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह वितरित किए।
0: So the race to FIFA World Cup glory has reached its most thrilling stage as the semi-final lineup is officially locked in following the conclusion of the quarter-finals. Well, listeners, we have a detailed report for you. Listen in.
2: The first blockbuster clash will see France take on Spain in a highly anticipated contest on Wednesday at 12:30 a.m. IST. France stormed into the last four with a commanding 2-0 victory over Morocco, while Spain earned their place after edging past Belgium 2-1 in a fiercely contested encounter. The excitement continues on Thursday when England will face Argentina in another high-stakes semi-final at 12:30 a.m. IST. England secured their spot with a dramatic 2-1 extra time win over Norway, while Argentina delivered an impressive performance to defeat Switzerland 3-1 and keep their title hopes alive. With a place in history on the line, the winners of these two heavyweight encounters will battle for the FIFA World Cup trophy in the grand final on 20th of July at New Jersey Stadium. The stage is set, the stakes couldn't be higher, and football fans around the world are in for two unforgettable nights of World Cup action. With the report of Mayur Jain, Anuja Kumar, Aaj Savere.
0: How true is that, Manoj? Two nights and people, they are, you know, gearing up to watch the semi-finals and then the final. Listeners, there's also one more achievement that we would like to actually talk about. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lord's before India's bowlers tightened their grip on the historic one-off women's test against England. This happened last night. So resuming the penultimate day with an overall lead of 269, India declared their second innings at 341 for 7, setting England an improbable target of 457 in 4 sessions. So in reply, England slumped to 130 for 6 at stumps, with Amy Jones unbeaten on 52, leaving India just 4 wickets away from a memorable victory in the first ever women's test at Lord's. So wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lord's.
1: अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर।
0: जी,
1: दिल्ली सरकार ने मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने कल अपने आवास पर जन सुनवाई का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने जन सुनवाई में नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर उनके शीघ्र तथा प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्री सिंह ने कहा कि जन सेवा, संवाद और समाधान के संकल्प के साथ दिल्ली सरकार राजधानी के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल अपने आवास पर दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के प्रति जन जागरूकता को लेकर भाजपा के रोहिणी जिलाध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने बताया कि बैठक में SIR की प्रक्रिया, पात्र मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुँचने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। दिल्ली की एक और खबर। केंद्र सरकार ने राजधानी के 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि इससे मेट्रो विस्तार, 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित अनेक जनहितकारी परियोजनाएं अब तेज गति से साकार होंगी।
0: वेल, वी विल हेड नाउ टू चेन्नई, वेयर रिसर्चर्स एट IIT मद्रास हैव डेवलप्ड अ वर्चुअल रियलिटी और VR एंड

0: artificial intelligence based system. And how interesting is that? That this will identify whether children aged 11 and 12, if they need academic support, it will identify even before it becomes visible in school report cards. So in a study, this involved 120 students. Children completed virtual reality based tasks. This involved solving math problems, reading clocks and forming words. So the 15-minute assessment analyzed response time or their mistakes and other learning patterns using AI. So this was able to identify whether they need academic support. And this system is based on Swiss psychologist Jean Piaget's theory of cognitive development. And in turn, this was developed by research scholar T.V. Mridula and Professor Manikanan from the Department of Applied Mechanics and Biomedical Engineering. So T.V. Mridula, other professor is Manikan from the Department of Applied Mechanics. Another story, another update from Chennai. The Chennai City Police has announced a year-long traffic diversion at Thirumangalam from today till July 13 next year for the construction of an elevated corridor under Chennai Metro Phase 2, Corridor 5. So motorists, they have been asked to follow the revised traffic arrangements and thereby cooperate during the construction period, which will end on July 13th next year.
1: अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना के लिए सिंधु दुर्ग में 150 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक नाव निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. पहले चरण का परिचालन इस वर्ष दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है. ये परियोजना 200 से अधिक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग करके 21 जलमार्गों के माध्यम से मुंबई ठाणे नवी मुंबई वसई और पनवेल को जोड़ेगी. मुंबई की एक और खबर है. मुंबई को पेयजल आपूर्ति करने वाली 7 झीलों में 12 जुलाई तक पानी का भंडार 7,21,354 मिलियन लीटर तक पहुंच गया है. ये कुल भंडारण क्षमता का 49.84% है. हालांकि ये स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 74.47% से काफ़ी कम है. बीएमसी के अनुसार तुलसी और वेहर झीलें उफान पर हैं, जबकि ताज़ा बारिश के बाद तांसा और ऊपरी वैतरणा झीलों में भी जल स्तर में सुधार हुआ है. शहर के पानी के सबसे बड़े स्रोत भाटसा झील में वर्तमान में 44.30% क्षमता का जल स्तर है.
0: Now we'll focus on Bengaluru. Former Karnataka Chief Minister and Haveri MP Basavraja Bommai has announced a mega artificial limb fitment camp in Haveri for differently abled people and senior citizens. He said that efforts will be made to set up an ALIMCO office in the district and this will improve access to assistive devices. This was the update from Bengaluru. Manoj.
1: Ji. अब कोलकाता पश्चिम बंगाल चलते हैं. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार सोमवार को पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे. राज्य सरकार ने NEP को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है. राज्य शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं. आज विकास भवन में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के साथ साथ शिक्षा से संबंधित अन्य मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने नीति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शिक्षकों के लिए कई ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया है.
0: Now we'll turn our attention to Hyderabad. So the TG20 league has the winners now. Hyderabad E-Champions, they won the TG20 league title with a 6-wicket victory over Khammam Aces in the final. So Khammam Aces, they were batting first and they scored 157 for 8 in 20 overs. So Hyderabad reached the target in 17.4 overs comfortably with 4 wickets in hand. So Hyderabad E-Champions, they received 1 crore rupees as prize money, while runners-up Khammam Aces, they earned 50 lakh rupees. Telangana Governor Shiv Pratap Shukla presented the trophies in the presence of Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka, DGP CV Anand and TG20 Brand Ambassador Vijay Devra Konda. So these were Metro City updates for you listeners.
1: और अब महानगरों दिल्ली मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं. दिल्ली में आज दिन के समय तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. यहां का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान

0: 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आज आम तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
1: श्योर मनोज, आई एम गोना बिगिन विद चेन्नई। चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 29 डिग्रीज एंड मैक्सिमम 39 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस अ जनरली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 21 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द मैक्सिमम मे रीच 33 डिग्री सेल्सियस। If we talk about Hyderabad, Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with haze. Temperatures are expected to range from 26 degrees to 35 degrees Celsius.
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 13 जुलाई है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं।
1: So Manoj and to our listeners, did you know? It's an open-ended question. In the year 1814, the first known use of the word OK, O-N-K, it appeared in print in an American newspaper, beginning the worldwide popularity of one of the most recognized expressions in English, OK, right? Everybody uses that. In 1923, the iconic Hollywood sign was officially dedicated in the Hollywood Hills, Los Angeles, California. It originally read Hollywood Land, and was created to advertise a new housing development.
0: 1930 में आज ही के दिन उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में इतिहास के पहले फीफा विश्व कप का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच में फ्रांस ने मैक्सिको को 4-1 से हराया और लुसियन लॉरेंट ने विश्व कप इतिहास का पहला गोल करके वैश्विक फुटबॉल के एक नए युग की शुरुआत की।
1: Wow, that's great. In 1977, Somalia formally broke its alliance with the Soviet Union during the Cold War period and expelled Soviet military advisors, significantly changing its international diplomatic position.
0: 1985 में आज ही के दिन लंदन के वेम्बली स्टेडियम और फिलाडेल्फिया के जेएफके स्टेडियम में एक साथ आयोजित प्रसिद्ध लाइव एड चैरिटी कॉन्सर्ट ने संगीत इतिहास रच दिया। इसमें दुनिया के सबसे बड़े रॉक सितारों ने प्रस्तुति दी और इथियोपिया में अकाल राहत के लिए लाखों डॉलर जुटाए गए।
1: Well, yes, I have watched the whole concert actually.
0: अच्छा,
1: I have watched it. It's really good. No, actually, it's available on YouTube as well. Achha. So I watched it there. And in 1990, the final episode of the original, The Muppet Show, aired in the United States, ending one of television's most beloved entertainment series.
0: 2011 में आज ही के दिन दुनिया के सबसे नए स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद दक्षिण सूडान सरकार ने कई देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की।
1: In 2014, Manoj, in the FIFA World Cup only, in the final, Brazil, Germany, the final was in Brazil, and Germany defeated Argentina 1-0 after extra time, winning its fourth World Cup title, and Mario Götze scored the historic winning goal, and I watched this match as well.
0: अच्छा अच्छा 2022 में आज ही के दिन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त पहली पूर्ण रंगीन वैज्ञानिक तस्वीरें जारी की, जो खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
1: That is true.
0: हाँ जी हाँ। और अब समय हो चला है याद करने का उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
1: Well, today we are remembering Alfred Marshall, the economist and the most influential economist of his time. His book, Principles of Economics, in 1890 actually, was the dominant economic textbook in England actually for many years and brought the ideas of supply and demand. Second one, economic students, they will be understanding it better. Marginal utility, this is a very common term, and cost of production into a coherent whole, popularizing the modern neoclassical approach, and this dominates microeconomics to this day. And as a result, he is known as the father of scientific economics, Alfred Marshall.
0: आज पुण्यतिथि है आशा पूर्णा देवी की। उनका जन्म 8 जनवरी 1909 को कोलकाता में हुआ था। वे बांग्ला भाषा की प्रख्यात उपन्यासकार थीं, जिन्होंने

0: मात्र 13 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया था और तब से ही उनकी लेखनी निरंतर सक्रिय बनी रही। आपकी मुख्य रचनाएं प्रथम प्रतिश्रुति, आकाश माटी, प्रेमो प्रयोजन आदि हैं। आपको टैगोर पुरस्कार, लीला पुरस्कार, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: Now let us tell you about James Roger McQuinn. The frontman and leader of the Byrds, solo artist, he has released 10 albums and collaborated with many other artists, among them being Bob Dylan, Tom Petty, Chris Hillman. So the Rickenbacker 12-string guitar is his signature instrument. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1991 along with the Byrds. Let's listen into, you're actually listening into, Ballad of Easy Rider.

0: आज पुण्यतिथि है यशपाल शर्मा की। उनका जन्म 11 अगस्त 1954 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। वे प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर थे। वे उस टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे जिसने साल 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। यशपाल शर्मा 1978 से 1985 तक भारतीय टीम के लिए खेले। उन्होंने 37 वनडे और 42 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 42 मैच की 40 पारियों में 883 रन बनाए जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 89 रहा। यशपाल शर्मा ने अपने करियर में 4 अर्धशतक भी लगाए। वे 1979-1983 तक भारतीय मध्यम क्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।
1: Well, our listeners will be knowing and will be aware about Rubik's Cube. So the inventor of Rubik's Cube, widely known for creating it, and Rubik's Magic and Rubik's Snake, today it's his birthday, Ennio Rubik. So Rubik studied sculpture at the Academy of Applied Arts and Design in Budapest and architecture at the Technical University. And a professor of design at the Academy, he pursued his hobby of building geometric models. One of these was a prototype of this cube, Rubik's Cube, made of 27 wooden blocks. And this took Rubik a month to solve the cube after scrambling it. And many people worldwide, they solve it. There are competitions also, dedicated competitions for Rubik's Cube solving.
0: आज जयंती है बीना राय की। उनका जन्म 13 जुलाई 1932 को लखनऊ में हुआ था। वे हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। उनका वास्तविक नाम कृष्णा सरीन था। उन्होंने सन 1951 में प्रदर्शित फिल्म काली घटा से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। विवाह के बाद बीना राय ने पति के साथ मिलकर पीएन फिल्म्स के बैनर में शगुफा, गोलकुंड का कैदी और समुंदर जैसी फिल्मों का निर्माण किया। साथ ही पति पत्नी की इस जोड़ी ने इन फिल्मों में अभिनय भी किया। 1968 में बनी अपना घर अपनी कहानी बीना राय की अंतिम प्रदर्शित फिल्म थी। आपकी मुख्य फिल्में काली घटा, मैरिन ड्राइव, चंद्रकांता, घूंघट, ताजमहल, अनारकली और दादी माँ आदि हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत।

0: So the saxophone part that we were listening to is played by Manohari Singh, and actually this was a live performance. जी, How जी. Great. Hmm.
1: और आज जयंती है प्रकाश मेहरा की. उनका जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था. वे हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक

थे। उन्हें भारतीय फिल्म जगत में मसाला फिल्मों के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी से की थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि देने और उनके करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रकाश मेहरा का बहुत बड़ा योगदान था। प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों के शानदार संगीत, दमदार संवाद और बेहतरीन निर्देशन के लिए जाने जाते थे। उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत और उनकी फिल्म का दमदार संवाद।

0: करें, क्या क्या करेंगे?
1: ये अपन का औकात है, इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा ये कपड़ा है ना, ये सब नकली है, असली ये कपड़ा है, क्योंकि इसमें अपन का गरीबी दिखाई देता है, ये अपन के जिस्म का चमड़ी है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा।

0: संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ

0: कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140

0: ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इन टू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. More from a correspondent.
4: The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. To do this, a stored cold gas-based uprighting system was developed and tested. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: கேட்கலாம் உதயகீதம் திரைப்படத்திற்காக SP பாலசுப்ரமணியம் பாடிய பாடல்.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिक

0: requested to coordinate with the affected families for the onward journey of the mortal remains to their final destinations. India has declared one day national mourning today as a mark of respect for Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalid Al Khalifa Al Thani, who passed away yesterday. The national flag will be flown at half-mast on the day of mourning throughout India on all buildings where the national flag is flown regularly. There will be no official entertainment on the day. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, noting that he was a visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity. In tennis, top seed Italy's Yannick Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed Germany's Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club, London last night. In the women's doubles final, 10-seeded Chinese-French pair of Guo Hanyu and Kristina Mladenovic defeated the second-seeded Canadian-Brazilian duo of Gabriela Dabrowski and Luisa Stefani 6-3, 7-5 to clinch the title at the centre court. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वियतनाम नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज भारत लाए जाएंगे। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए। इसराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव होंगे और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विमान से भारत वापस लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे हो ची मिन्ह शहर से रवाना होगा और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय समयानुसार रात करीब 9:30 बजे पहुंचेगा। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सेलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने

0: वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए खुला है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने ईरान की इस नई आक्रामकता का जवाब महत्वपूर्ण सैन्य बल से दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश ने ईरान और अमेरिका के बीच फिर शुरू हुए सैन्य टकरावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अमेरिका और ईरान दोनों से वार्ता फिर से शुरू करने और कूटनीति के माध्यम से आपसी मुद्दों को हल करने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
1: इसराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव को व्यापक रूप से गाजा संघर्ष की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। इसराइल की संसद शुक्रवार को अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम सत्र आयोजित करेगी। इसराइली सेना के पूर्व प्रमुख गादी आइजेनकोट नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे। हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार आइजेनकोट की याशर पार्टी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से मामूली अंतर से आगे है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है।
3: कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भारत सरकार की ओर से कतर को शोक संदेश देने के लिए वहां जा रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अमेरिकी संसद कांग्रेस में उच्च सदन सीनेट के सदस्य लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। श्री ग्राहम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति की वकालत करने के लिए दुनिया भर की यात्रा की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ग्राहम के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं जया भारती।
4: यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। यह सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवा ग्रैंड स्लैम खिताब है। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हानियो और क्रिस्टीना मालडिनोविच ने जीता। फाइनल में 10वीं वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने दूसरे वरीय कनाडा और ब्राजील की जोड़ी गैब्रियला डाब्रोवस्की और लुइसा स्टेफानी को 6-3, 7-5 से हराया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को इंग्लैंड

0: इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे खेला जाएगा। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमें 20 जुलाई को न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल खेलेंगी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वियतनाम नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज भारत लाए जाएंगे। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले किए। इसराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: அடுத்து ஒலிக்க இருக்கும் குரல் கே ஜே யேசுதாஸ் மன்னன் திரைப்படத்திற்காக

0: செவன்ஜி ரெயின்போ காலனி திரைப்படத்திற்காக ஸ்ரேயா கோஷல் பாடிய பாடலுடன் சுகமான ராகங்கள் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜாகிருதி சர்மா. पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं. इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 तथा पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे. राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं. नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है. एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ.
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे. इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल है. छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा. सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी. इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक पेश करेगी. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है. इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी. पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है. 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं. कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं. इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है. भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल स्तर का नेतृत्व करेंगे. वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जा रहे हैं. वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा. अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं. अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है. इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है. शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त

जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच ने जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: తో సమాప్తం. నమస్కారం.
1: நேரம் 12 மணி. குறளமுதம் கேட்கலாம்.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: திரைகானத்தில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் பறக்கும் பாவை. படத்திற்காக பி. சுசீலா பாடிய பாடல்.

0: ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜாகிருதி சர்மா. पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं. इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे. राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं. नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6ठा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent for winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held at Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. The Prime Minister further noted that it is equally commendable that in the last decade, Indian students have performed exceptionally well in the various editions of this platform. The government today informed that

0: व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने की 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो 6 लाख लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में, स्पेन,

0: கனடா, அமெரிக்கா, யுகே, ஜப்பான், தக்ஷிண கொரியா ஐசி படி படி கம்பெனியான எஃப்டிஐ கே மாத்தியம் சே 28,200 கரோட் சே ஜியாதா கா நிவேஷ் ஹமாரே பிரதேஷ் கே அந்தர் கர் லியா ஹை.
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रूपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका

0: को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி சென்னை 100.1 MHz FM கோல்டு அலைவரிசை. நாம் இப்பொழுது கேட்கவிருப்பது திரை கானம். முதலாவதாக மனு, சித்ரா ஆகியோர் குரல்களில் இதயத்தை திருடாதே திரைப்பட பாடலை கேட்கலாம்.

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: திரைகானத்தில் அடுத்ததாக நாம் கேட்கவிருப்பது FP பாலசுப்ரமணியம் குரலில் இதயம் திரைப்பட பாடல்.

தாம் தர்கிறதாம் தீம்தீம்தீம்தர்கிறதை தீம்த.

0: చాలా బాగా పాడుతున్నారే.
1: భైషడ్యం మందరం. ఆ

சத்யபாம நிடல தட கடித கரகமலையை அநேக சாஷ்டாங்க

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कथित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और

0: आधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने रांची जिले के खलारी जिले के पिपरवार क्षेत्र के करकट्टा वन में अवैध कोयला खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 200 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया है। अधिकारियों ने इस अभियान को क्षेत्र में संगठित कोयला खनन और तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर

0: सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने रांची जिले के खलारी जिले के पिपरवार क्षेत्र के करकट्टा वन में अवैध कोयला खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 200 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया है। अधिकारियों ने इस अभियान को क्षेत्र में संगठित कोयला खनन और तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमित कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Supreme Court today ruled that the process of determining citizenship or declaring an individual a foreigner must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. The Apex Court was hearing a batch of petitions filed by 27 people who had been declared foreigners by the foreigners' tribunals in Assam. The Supreme Court set aside the judgments of the Guwahati High Court that had upheld declarations of 27 appellants as foreigners. A bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta acknowledged that the state has a legitimate and compelling interest in ensuring that those not legally entitled to Indian citizenship do not obtain it through false claims, misuse of legal process or delay, but stressed that due process must prevail. The Supreme Court today directed the Special Investigation Team SIT constituted by the Uttar Pradesh government on alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple to submit a status report on the investigation. The court also issued notice to the Union Government, the Uttar Pradesh government and the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust on petitions seeking a CBI probe into alleged embezzlement of donations meant for the Ayodhya Ram Mandir. A bench headed by Chief Justice of India, Surya Kant, and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohan heard the petitions. Earlier on June 13, the UP government constituted a three-member SIT at the request of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust following allegations of misappropriation of temple donations. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highway Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, will inaugurate the Lucknow-Kanpur Expressway this afternoon. We have a report.
0: 63-kilometer long, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway with India's second longest elevated corridor is also country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. Equipped with AI-based speed enforcement, emergency call boxes at every 2 kilometers and two integrated 24/7 control rooms, the expressway is designed for speeds of up to 120 km per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 40 minutes. A car journey between the two cities will cost ₹275 and two-wheelers are not allowed on it. Sushil Chandra Tiwari.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: 840 से लेकर 1,94,660 रुपए। पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए कृपया दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट देखिए www.delhihighcourt.nic.in। इस विज्ञापन से संबंधित भविष्य की किसी भी अधिसूचना या शुद्धि पत्र केवल दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ही प्रकाशित होगा। बसु विज्ञान मंदिर कोलकाता, एक पद के लिए ऑडिट एंड फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये भर्ती डेपुटेशन के आधार पर है, जिसमें पे लेवल 10 रहेगा तथा पद की अवधि 3 वर्ष है। विस्तृत रिक्ति विज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया, नियम और शर्तों तथा अन्य निर्देशों के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.jcbose.ac.in। भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु इनटेक के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 6 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक है। ऑनलाइन परीक्षा 22 और 23 सितंबर 2026 को होनी है। उम्मीदवारों को आवेदन सिर्फ ऑनलाइन करना होगा और इसके लिए विस्तृत निर्देश उपलब्ध हैं इस वेबसाइट पर iafrecruitment.edcil.co.in। विस्तृत नियम और शर्तें आप 4 से 10 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी देख सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। श्रोताओं, हर दिन अपने साथ घटनाओं का एक नया अध्याय लेकर आता है। कुछ घटनाएं आज की सुर्खियां बनती है तो कुछ यादें इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर हमें प्रेरित करती है। परिक्रमा के इस अंक में हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया के प्रमुख खबरों से, साथ ही उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद करेंगे जिनकी उपलब्धियां आज भी हमारे समाज और संस्कृति को समृद्ध बना रही है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
4: हेलो वैष्णवी। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट वैष्णवी।

0: scoring matches of the tournament will keep every minute intensely competitive. So enjoy the upcoming matches and don't forget to cheer for your favorite team. Yes, and we begin a program with the news headlines at this hour.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया।
0: Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in the Ram Janmabhoomi Temple.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई की आदेश जारी किए।
0: Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight.
1: और ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए।
0: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Catch the Rain Abhiyan.

0: Yes, and today we are talking about something that affects every one of us, water.
1: बिल्कुल अभिषेक, हम सभी मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से बरसने वाला ये अनमोल पानी आखिर जाता कहाँ है?
0: A great question, Vaishnavi, and much of it simply flows away. But imagine if we could save every drop where it falls.
1: जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन अभियान के पीछे ठीक यही सोच है.
0: And the simple yet powerful message is, Vaishnavi, catch the rain where it falls, when it falls. And this nationwide campaign led by the Minister of Jal Shakti under the National Water Mission encourages people across India to harvest rainwater and recharge groundwater.
1: और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल सरकार की पहल नहीं है बल्कि जन भागीदारी का अभियान है. घर हो या स्कूल, गांव हो या शहर, हर व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है.
0: And you know what, Vaishnavi, people often ask, why should we bother collecting rainwater when we get water from taps?
1: जी, और अभिषेक, आपने ज्यादा देखा है कि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है, जैसा कि आपने पूछा. लेकिन श्रोताओं, देश के कई हिस्सों में भूजल का स्तर लगातार घट रहा है. ऐसे में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भूजल को फिर से भरने, पानी की कमी को कम करने, खेती को सहारा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रखने का एक प्रभावी उपाय है.
0: Exactly, Vaishnavi. And every drop we save today becomes a lifeline tomorrow. And the campaign focuses on five important areas. Let's take them one by one, shall we?
1: जी, पहला है जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन. इसके अंतर्गत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चेक डैम और जल संचयन गड्ढों जैसी संरचनाएं बनाकर वर्षा के पानी को सहेजने पर जोर दिया जाता है.
0: एंड सेकंड ऑफ कोर्स, वैष्णवी, इज द रेनोवेशन एंड द मैपिंग ऑफ वाटर बॉडीज, क्लीनिंग पॉन्ड्स, लेक्स एंड टैंक्स, रिमूविंग एनक्रोचमेंट्स, डीसिल्टिंग देम एंड इवन जियो टैगिंग देम सो दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड.
1: वहीं तीसरा है जल स्रोतों का पुनः उपयोग और भूजल रिचार्ज, यानी पुराने और या अनुपयोगी बोरवेल और कुओं को बेकार छोड़ने के बजाय उन्हें भूजल रिचार्ज के लिए उपयोग में लाया जाता है ताकि वर्षा का पानी दोबारा धरती के भीतर पहुंच सके.
0: एंड स्पीकिंग ऑफ द फोर्थ इंपॉर्टेंट एरिया, वैष्णवी, इज द इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन. प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प्स द सॉइल रिटेन मॉइस्चर एंड अलाउज मोर रेन वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड नेचुरली.
1: और अभिषेक, पांचवा है यानी आखिरी, जन जागरूकता. क्योंकि अभिषेक, किसी भी अभियान की सफलता तभी संभव है जब समाज का हर व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी समझे और उसमें सक्रिय भागीदारी निभाए.
0: So we have covered all the five important areas, isn't it? And you know what, rainwater harvesting sounds like a simple idea, but its benefits are truly remarkable.
1: बिल्कुल श्रोताओं, हम केवल पानी ही नहीं

0: बचाते बल्कि आने वाले कल को भी सुरक्षित बनाते हैं।
1: Absolutely, and for starters, rainwater harvesting helps recharge groundwater, which means wells and bore wells are more likely to have water even during dry seasons.
0: साथ ही ये घरों, बगीचों और खेती के लिए पानी का एक अतिरिक्त स्रोत भी उपलब्ध कराता है, खासकर गर्मियों में, जब पानी की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब इसका महत्व और बढ़ जाता है।
1: And here's another advantage, Vaishnavi. It helps reduce flooding and soil erosion. Instead of rainwater rushing away and causing waterlogging, it gets absorbed in the ground.
0: अभिषेक, बल्कि इतना ही नहीं, किसानों के लिए भी ये बेहद लाभदायक है। अगर हम देखें तो भूजल का स्तर बेहतर होने से सिंचाई आसान होती है, फसलों की गुणवत्ता सुधरती है और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है।
1: And also not to forget, Vaishnavi, rainwater harvesting also helps save energy and reduce the cost of pumping and treating water, making it an environmentally friendly and sustainable solution.
0: श्रोताओं, यानी हर छत पर बना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हर जल संचयन गड्ढा और हर चेक डैम्स जल संरक्षण की दिशा में एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावी कदम है।
1: Absolutely, Vaishnavi, and one season of rain can create benefits that last all year. That's why every drop we harvest today helps build a stronger, greener and more water secure India.
0: श्रोताओं, यहाँ पर आपके लिए छोटा सा सवाल है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके घर, स्कूल या कार्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या नहीं?
1: If the answer is yes, Vaishnavi, it's wonderful. If not, maybe this monsoon is a perfect time to start the conversation.
0: श्रोताओं, याद रहे, छोटे छोटे प्रयास जैसे पानी की बर्बादी रोकना, नालियों की सफाई, तालाबों का संरक्षण और अधिक से अधिक पेड़ लगाना मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: And remember, rainwater is one of the nature's greatest gifts. Conserving it today means ensuring clean and sufficient water for tomorrow. So to conclude our discussion today, Vaishnavi, this monsoon, don't just watch the rain, catch the rain where it falls, when it falls. Together we can recharge our groundwater, strengthen our communities and build a water-secure India.
0: श्रोताओ, आइए इस मॉनसून हम सब एक संकल्प लें, पानी बचाए, हर बूंद का सम्मान करें और अपने परिवार, दोस्तों व समाज को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें, क्योंकि याद रखिए, हर बूंद कीमती है और आज बचाया गया पानी ही कल का सुरक्षित भविष्य है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0112331048, 0112371711, 0112371706 और 0112331444। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है।
1: Yes, absolutely, Vaishnavi, and we start off with a story from Visakhapatnam, and the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Vizianagaram is emerging as a dedicated institution for tribal education, research and community development. We have more from a correspondent.
2: The Central Tribal University of Andhra Pradesh seeks to expand higher education opportunities for tribal youth. It also works to preserve tribal culture, languages, traditions and indigenous knowledge system. The university promotes research on tribal livelihoods, medicinal practices, forest resources and sustainable development. It is also developing tribal-centric models for inclusive growth. Through its science and technology hub, the university is taking the benefits of modern science to tribal communities in North Andhra Pradesh. Its programs focus on skill development, public health, nutrition, climate resilience and local entrepreneurship. Speaking at the first convocation of the university held recently, President Draupadi Murmu said the institution has a special responsibility to build confidence and leadership among tribal youth.

0: आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्त करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यहाँ के जनजातीय समाज की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली कि समाज के इस वर्ग को आधुनिक शिक्षा के उपयोगी आयामों से जोड़कर ये विश्वविद्यालय देश के समतापरक विकास में यहाँ के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगा।
1: The president expressed confidence that the university would play a key role in empowering tribal communities and contribute to the vision of Viksit Bharat by 2047. अल्लू मुरली फॉर परिक्रमा, आकाशवाणी न्यूज, विशाखापट्टनम।
2: श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की चिप क्रांति को आगे बढ़ाने में झारखंड की बेटियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं? जी हाँ, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में शुरू हुए नए सेमीकंडक्टर प्लांट में झारखंड की बेटियां की ऐतिहासिक भागीदारी देश के लिए गर्व की बात है। आइए सुनते हैं हमारी रांची संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
3: कभी पिछड़े समझे जाने वाले झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से निकलकर यहां की बेटियां आज देश की सबसे आधुनिक तकनीक यानी माइक्रोचिप का निर्माण कर रही हैं। गुजरात के सांणंद में सीजी सेमी के नए प्लांट में जब कमर्शियल चिप प्रोडक्शन की शुरुआत हुई तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बेटियों का आत्मविश्वास देखकर गदगद हो गए।
4: उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर।
3: प्रधानमंत्री की ये सराहना झारखंड के गिरिडीह, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम सहित आदिवासी क्षेत्रों की बेटियों के संघर्ष का सम्मान है। घरेलू चिप उत्पादन की कमान संभालने से पहले इन महिलाओं ने विशेष प्रशिक्षण के लिए मलेशिया की भी यात्रा की। गिरिडीह की मशीन ऑपरेटर पूनम कुमारी ने प्रधानमंत्री के संवाद में अपनी इस अद्भुत यात्रा का अनुभव साझा किया है।
5: पहले तो लगता था कि हाँ, गाँव की लड़की है, बाहर जाके पढ़ रही है, रांची में जब मैं थी कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही जा रही है बस टाइम पास करने के लिए। लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ, एक्चुअल में कुछ कर रही है।
3: टाटा स्टील तकनीकी संस्थान जमशेदपुर से डिप्लोमा कर देश की पहली कमर्शियल चिप कोर टीम का हिस्सा बनी जूनियर इंजीनियर तनीषा गौतम ने भी इस मिशन को अपने पूरे परिवार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया।
6: लड़कियां अपने घर से 2700 किलोमीटर दूर आके गुजरात में काम कर रही हैं, सेमीकंडक्टर में काम कर रही हैं। ये हमारे पूरे देश के लिए, जमशेदपुर के लिए, झारखंड के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है।
3: स्पष्ट है कि झारखंड की इन बेटियों ने साबित कर दिया है कि अगर सही अवसर मिले तो भारत की ग्रामीण प्रतिभाएं ग्लोबल इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स को भी मात दे सकती हैं। परिक्रमा के लिए जमशेदपुर से कुमार कुणाल के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
7: Yes, and from Rachi, we now turn our attention to Nagaland and Kohima. And Nagaland has launched the Unified Digital Agriculture Ecosystem, a comprehensive digital platform expected to improve access to information advisory services and markets across the state. And let's hear more from a Kohima correspondent.
8: The new platform is designed to eliminate traditional bottlenecks in the supply chain and ensure that farmers, particularly in remote areas, have better access to essential information and government support. The Unified Digital Agriculture Ecosystem brings together several advanced technologies under one umbrella. Among its key features are AI-driven market intelligence to provide price forecasts and demand analysis, IoT-based smart field monitoring to deliver real-time soil and weather data, and an AI-powered chatbot, Kheti Manu, which will provide farming advisory and technical guidance in local dialects. The integrated platform also includes GIS services, an enterprise resource planning system, and an e-hub linking all district agricultural offices to strengthen coordination and service delivery. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashwani News, Kohima.
2: श्रोताओं, अब रुख करते हैं कर्स्योंग की तरफ। नेपाली जगत के प्रख्यात प्रथम कवि, लेखक व अनुवादक भानुभक्त आचार्य की 212वीं जन्म जयंती देश विदेश में भव्य रूप से मनाई जा रही है। 13 जुलाई 1814 में नेपाल के तनहू जिला में जन्मे भानुभक्त आचार्य ने वाल्मीकि रामायण को सरल नेपाली भाषा में अनुवाद कर जन जन में नेपाली भाषा को लोकप्रिय बनाया था। आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
9: देश विदेश में विशेष करके भारत में नेपाली गोरखा आबादी वाले राज्यों तथा नेपाल में आज विविध साहित्यिक व सांस्कृतिक समारोहों के साथ 212वीं भानुभक्त आचार्य जयंती पालन किया जा रहा है। नेपाली भाषा के प्रथम कवि लेखक व अनुवादक भानुभक्त ने संस्कृत भाषा के वाल्मीकि रामायण का सरल नेपाली भाषा में अनुवाद किया, जिसने नेपाली भाषा को सहज भाव से जन जन तक

0: पहुंचाने तथा भाषा को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता को एक मजबूत आधार प्रदान करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़, तराई व डुअर्स, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में आज विशेष समारोहों का आयोजन किया गया है तथा भानुभक्त आचार्य को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दार्जिलिंग पहाड़ तथा सिक्किम में विशेष शोभा यात्राएं निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी व विविध संघ संगठनों ने भाग लिया। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शियांग।
1: And from Darjeeling, some news from the state of Bihar. And in Bihar, tourists will now be able to enjoy heli and air tourism services. Chief Minister Samraj Chaudhary today launched the Bihar Heli Tourism and Air Tourism Service Scheme at a function held in Patna. An online booking portal for the service was inaugurated on the occasion.
2: अब आइए सुनते हैं नागपुर के ताजबाग शरीफ में सर्वधर्म संभाव के प्रतीक हजरत ताजुल औलिया बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 114वें सालाना उर्स के अवसर पर निकाले गए शाही दरबारी संदल पर ये विशेष रिपोर्ट।
3: नागपुर का ऐतिहासिक ताजबाग इन दिनों आस्था, श्रद्धा और सूफियाना रंग में सरोबार है। हजरत ताजुल औलिया बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 104वें सालाना उर्स के अवसर पर शाही दरबारी संदल पूरे शानो शौकत के साथ निकाला गया। इस अवसर पर संदल में शामिल होने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि
4: आपका सबका जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हो, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से मुक्त हो और आपको अच्छा जीवन प्राप्त हो, इसलिए हजरत बाबा ताजुद्दीन आपको भी और मुझे भी अपना आशीर्वाद दें।
3: हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से उर्स के दौरान प्रतिदिन लगभग 5000 लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
1: Yes, and from Nagpur on to Jammu and Kashmir, and the world's highest railway arch bridge, the Chinab Bridge in Riyasi district, has become a major attraction for pilgrims undertaking the annual Sri Amarnath Ji Yatra. Akashvani Jammu correspondent reports that thousands of devotees travelling through the region are making brief stops to witness the engineering marvel towering above the Chinab River, and the bridge has become a popular photo and sightseeing destination, adding a unique travel experience to the spiritual journey.
2: अभिषेक, अब चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की ताजा हलचल।
1: एंड वी स्टार्ट ऑफ विद द बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप्स। एंड इंडियन बॉक्सर्स रिमेन द स्ट्रांग फोर्स एट द एशियन अंडर 19 एंड अंडर 23 चैंपियनशिप्स, विद 8 ऑफ देम एडवांसिंग टू द फाइनल्स अक्रॉस मेंस एंड वुमेन्स अंडर 23 कैटेगरीज एंड 7 अदर्स सिक्योरिंग ब्रॉन्ज मेडल्स आफ्टर सेमीफाइनल फिनिशेस इन जकार्ता। And on to some business news. Benchmark domestic equity indices ended with minor gains today, reflecting a subdued trading session, and the Sensex edged up 47 points to close at 77,616. The Nifty added 4 points to settle at 24,211. For more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
2: श्रोताओं, अब बात उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं आशापूर्ण देवी को। आज उनकी पुण्यतिथि है। बांग्ला साहित्य की महान लेखिका आशापूर्ण देवी ने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज, विशेषकर महिलाओं के जीवन और संघर्षों को नई आवाज दी। उनकी कालजयी, त्रयी प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा भारतीय साहित्य की अमूल धरोहर मानी जाती है। साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, रविंद्र पुरस्कार तथा पद्मश्री सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 1983 विश्व कप की जीत का जिक्र यशपाल शर्मा के बिना अधूरा माना जाता है। वे भारतीय टीम के भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाज थे और विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई उनकी 89 रनों की शानदार पारी आज भी भारतीय क्रिकेट के यादगार पारियों में गिनी जाती है। उनके जुझारू प्रदर्शन ने भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: Yes, and we also remembering Beena Rai, who was born on this day

0: In 1931, she was an acclaimed Indian actress and a major star during the black and white era of Hindi cinema. Born in British India, she is best remembered for playing tragic and romantic heroines in a timeless classics like Anarkali, 1953, Taj Mahal, 1963. And she also won the Filmfare Award for Best Actress for Ghoongat in 1960. She made her debut with Kali Ghata in 1951 and was married to prominent actor Prem Nath Malhotra. Let's listen into a dialogue from one of her movies.
1: खबरदार लड़की
2: बाजी, एक तो पराई लड़कियों से गाने को कहते हो और ऊपर से अकड़ दिखाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: हम इनकी तरफ से तुमसे माफी चाहते हैं।
2: हम तुमसे माफी मांगते हैं, अच्छी माफी है ये, अपने आप को हम और मुझे तुम, जैसे तुम कोई बादशाह हो।
1: अब इसका जवाब हम तुम्हें क्या दे सकते?
2: तो फिर चले जाओ यहाँ से।
1: और अगर हम जाने से इनकार करें
2: तो फिर मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी।
1: किससे?
2: अकबर बादशाह, इन्हें सजा दो।
1: ऐसा ना करना।
3: अभिषेक, बीना राय की अदाकारी जितनी यादगार रही उतनी ही अमर उनकी फिल्मों के गीत भी रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने पाकिजा फिल्म का जिक्र किया, तो आइए श्रोताओं को सुनाते हैं उस फिल्म का एक खूबसूरत गीत, ये जिंदगी उसी की है।

सुरों की साधना जब तपस्या बन जाए तब जन्म लेती है केसरबाई केरकर जैसी महान विभूतियाँ। केसरबाई केरकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को गोवा में हुआ था। वे जयपुर अतरौली घराने की महान शास्त्रीय गायिका थी। अपनी विलक्षण गायकी, शुद्ध स्वरों और कठिन रागों पर अद्भुत पकड़ के कारण उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी। ललित, तोड़ी, बसंत बहार और कई दुर्लभ रागों की उनकी प्रस्तुतियां आज भी संगीत प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए आदर्श मानी जाती है। भारतीय संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। केसरबाई केरकर की गायकी का प्रभाव केवल शब्दों में नहीं समाया जा सकता। आइए अब उनकी स्वर साधना की एक अनुपम झलक सुनते हैं।

0: Department of Humanities and Social Sciences at the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, and was awarded the prestigious Padma Shri by the Government of India in 2004. Sunita Jain authored over 100 books spanning poetry, novels and short stories, often focusing on themes of gender, equality, love and women's experiences in Indian society.
1: अब हम बात करेंगे उस्ताद देबू के बारे में. उनका जन्म 13 जुलाई 1947 को गुजरात के नवसारी में हुआ था. भारतीय समकालीन नृत्य को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने वाले उस्ताद देबू ने कथक और कथकली जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को आधुनिक नृत्य के साथ जोड़कर अपनी अनूठी शैली विकसित की थी. उन्होंने दुनिया के अनेक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और दिव्यांग कलाकारों के साथ अपने विशेष कार्य के लिए भी सराहे गए. भारतीय नृत्य के क्षेत्र में उन्हें के असाधारण योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.
0: एंड वी आल्सो रिमेंबरिंग सैम नील हु पास्ड अवे टुडे. ही वाज अ हाईली एक्लेम्ड न्यूजीलैंड एक्टर बोर्न इन नॉर्दर्न आयरलैंड. ही बिल्ट अ लेजेंडरी 5-decade करियर इन फिल्म एंड टेलीविजन. ही वाज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड फॉर पोर्ट्रेइंग paleontologist Dr. Alan Grant in the Jurassic Park franchise, as well as his roles in The Piano, Peaky Blinders, and Hunt for the Wilder People. Beyond the screen, Neil was a celebrated winemaker who founded Two Paddocks Vineyard in New Zealand in 1997 and authored a 2023 memoir, Did I Ever Tell You This? And also, we are remembering Harrison Ford, who was born on this day in 1942. He, of course, is an iconic American actor and producer. He is best known for portraying two of the most legendary characters in cinematic history, Han Solo in Star Wars franchise, and the adventurous archaeologist Indiana Jones. So with that, it's a wrap on this edition of Parikrama. So from Vaishnavi and me, Abhishek Mukhopadhyay, till the next time, bye and
1: Namaskar. Namaskar.

0: நேயர்களே, தொடர்கிறது ஹிந்தியில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता

दोहराई है। जापान के तोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने

0: किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ஆகாஷ்வாணி சென்னை, நேரம் 6:05, 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசை.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे गगनयान मिशन की, जो भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल से जुड़े 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन सफल परीक्षणों ने भारत को अपने पहले स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष मिशन के और करीब पहुंचा दिया है। क्रू मॉड्यूल वही हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री यात्रा करेंगे, इसलिए इसकी प्रत्येक प्रणाली का पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में हुए परीक्षणों में समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल को स्वतः सीधा करने वाली प्रणाली, सर्विस मॉड्यूल से उसके सुरक्षित अलग करने की व्यवस्था और पैराशूट खुलने से पहले एपेक्स कवर को अलग करने वाली प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। ये तीनों प्रणालियां अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन श्रोताओं, ये विषय केवल एक अंतरिक्ष मिशन तक सीमित नहीं है। गगनयान मिशन भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भर तकनीक, उच्च स्तरीय विनिर्माण, नवाचार और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में बढ़ते कदमों का भी प्रतीक है। ये मिशन केवल अंतरिक्ष में मानव भेजने का प्रयास नहीं, बल्कि देश में विकसित हो रही अत्याधुनिक तकनीकों, उद्योगों और अनुसंधान क्षमताओं का भी प्रमाण है। आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि गगनयान मिशन क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या है, अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है और हाल ही में हुए ये परीक्षण भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। श्रोताओं, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 6 दशक से अधिक पुराना है। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशनों तक इसरो ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इन सभी अभियानों में अंतरिक्षयान तो भेजे गए, मानव नहीं। मानव अंतरिक्ष उड़ान किसी भी देश के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सबसे जटिल उपलब्धियों में गिनी जाती है। इसमें केवल रॉकेट तैयार करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली, सुरक्षित पुनः प्रवेश, पैराशूट प्रणाली, समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग और बचाव व्यवस्था जैसी अनेक तकनीकों का सफल होना भी आवश्यक होता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने गगनयान मिशन की शुरुआत की। 15 अगस्त 2018 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की।
2: मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं देश के वैज्ञानिकों को, देश के टेक्नीशियंस को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं इस महान काम के लिए।
1: इस मिशन का उद्देश्य भारत में विकसित स्वदेशी तकनीक के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन किसी भी मानव मिशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा। हाल ही में इसी दिशा में 3 महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए। आइए विस्तार से इसे समझते हैं।
3: गगनयान मिशन के अंतर्गत इसरो ने हाल ही में क्रू मॉड्यूल से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण प्रणालियों का सफल परीक्षण किया। इन परीक्षणों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना

0: बताया था कि अंतरिक्ष से लौटते समय प्रत्येक सुरक्षा प्रणाली निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करे। पहला परीक्षण था क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम का। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटकर समुद्र में उतरता है तब समुद्री लहरों के कारण उसके उलट जाने की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ये प्रणाली मॉड्यूल को स्वतः सीधा कर देती है। ये तकनीक कोल्ड गैस पर आधारित है और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके सफल परीक्षण से ये पुष्टि हुई है कि आपात स्थिति में भी क्रू मॉड्यूल सुरक्षित स्थिति में आ सकता है। दूसरा परीक्षण था अम्बिलिकल सेपरेशन मैकेनिज्म। ये प्रणाली क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अलग करती है। सर्विस मॉड्यूल मिशन के दौरान ऊर्जा और प्रणोदन उपलब्ध कराता है, जबकि क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश से पहले दोनों मॉड्यूल का सही समय पर अलग होना अनिवार्य होता है। इसरो ने सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल के माध्यम से इस प्रणाली का परीक्षण किया और ये सफलतापूर्वक निर्धारित मानकों पर खरी उतरी। तीसरा परीक्षण था एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम का। एपेक्स कवर पूरे मिशन के दौरान पैराशूट प्रणाली की सुरक्षा करता है। पृथ्वी पर उतरने से ठीक पहले इसे अलग किया जाता है ताकि पैराशूट समय पर खुल सके और क्रू मॉड्यूल नियंत्रित गति से सुरक्षित समुद्र में उतर सके। इस परीक्षण में ये भी प्रमाणित हुआ कि एपेक्स कवर के अलग होने के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचना पूरी तरह स्थिर रहती है। इन तीनों सफल परीक्षणों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि गगनयान मिशन की कई महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियां अब परिपक्वता की ओर बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जागृति शर्मा।
1: गगनयान मिशन में हाल ही में हुए इन सफल परीक्षणों का महत्व केवल तकनीकी उपलब्धि तक सीमित नहीं है। इन्हें समझने के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि इस मिशन की अब तक की यात्रा कैसी रही है और भारत किस चरण पर पहुंच चुका है। आइए विस्तार से समझते हैं इस रिपोर्ट में।
2: भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की औपचारिक शुरुआत 15 अगस्त 2018 को हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से इसकी घोषणा की। इसके बाद दिसंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान परियोजना को मंजूरी दी। साल 2023 में इसरो ने TVD-1 यानी टेस्ट व्हीकल डेमोंस्ट्रेशन 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन में क्रू स्केप सिस्टम का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान ये प्रदर्शित किया गया कि यदि प्रक्षेपण के समय किसी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से सुरक्षित अलग कर अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद मिशन के विभिन्न चरणों में पैराशूट प्रणाली, रिकवरी ऑपरेशन, जीवन रक्षक प्रणाली, प्रोपल्शन सिस्टम और अन्य कई उप प्रणालियों का लगातार परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना के साथ मिलकर समुद्र में रिकवरी अभ्यास भी किए गए ताकि वास्तविक मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। हाल ही में न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि चंद्रयान और आदित्य L1 जैसी सफलताओं के बाद अब गगनयान भारत की अगली बड़ी वैज्ञानिक छलांग है।
3: भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर। इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है।
2: इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2026 में इसरो ने क्रू मॉड्यूल से जुड़े 3 और महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इनमें क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बिलिकल सेपरेशन मैकेनिज्म और एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम शामिल हैं।
1: श्रोताओं, इस मिशन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों यानी MSME के बीच सहयोग को भी नई दिशा दी है। गगनयान के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपकरण और प्रणालियां भारत में ही विकसित की जा रही हैं, जिससे देश में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष मानव संसाधन विकास भी है। गगनयान नई पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM शिक्षा की ओर

0: प्रेरित करेगा। श्रोताओं, भारत अब मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक सबसे जटिल और संवेदनशील तकनीकों में भी लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। ये उपलब्धि केवल अंतरिक्ष विज्ञान तक सीमित नहीं है, इसके माध्यम से देश में उन्नत विनिर्माण, उच्च तकनीक अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् नागरिकता निर्णयः उतवा विदेशित्व घोषणा निष्पक्षया, विधिसम्मतया, युक्तियुतया च प्रक्रियया एव भवेत्। सममेव न्यायालयेन 27 याचिकाकर्तॄणां विदेशित्वं समर्थनयुतः गुवाहाटी उच्चन्यायालयस्य निर्णयः अपि निरस्तः। सर्वोच्च न्यायालयेन अयोध्यायाः रामजन्मभूमिमन्दिरस्य दानविषये आरोपित दुरुपयोगस्य अन्वेषणरताय विशेषान्वेषणदलाय अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः तमिलनाडुराज्ये अमोनिया गैस स्रावेन प्रभावितानां झारखण्ड राज्यस्य श्रमिकाणां प्रकरणस्य संज्ञानं गृहीतवती तथा च शीघ्र कार्य संपादनाय निर्देशान् प्रदत्तवती। भारत जापान देशयोः मध्ये अद्य प्रचलिते प्रादेशिक वैश्विक सुरक्षा परिदृश्ये व्यापक विमर्शः अभवत्। अपि च टेनिस क्रीडायाम् इटली देशस्य यानिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य निर्णीतं यत् कस्यचित् व्यक्तेः नागरिकता निर्णयः अथवा तस्य विदेशित्वस्य घोषणा निष्पक्ष, विधिसम्मत, युक्तियुत प्रक्रियया एव भवेत्। सर्वोच्च न्यायालये असमराज्यस्य विदेशी न्यायाधिकरणैः विदेशिनः इति घोषितानां 27 जनानां याचिकानां श्रवणम् अभवत्। न्यायालयेन गुवाहाटी उच्चन्यायालयस्य सः निर्णयः निरस्तः, येन एते 27 याचिकाकर्तारः विदेशिनः इति निर्णयः समर्थितः आसीत्। विक्रमनाथ संदीप मेहता इत्येताभ्यां न्यायमूर्तिभ्याम् उक्तं यत् ये भारतीय नागरिकतायाः अयोग्याः सन्ति ते मिथ्या प्रतिपादनैः न्यायप्रक्रियायाः दुरुपयोगेन उतवा प्रक्रिया विलंबस्य लाभम् उपयुज्य भारतीय नागरिकतां न प्राप्नुयुः। एतस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यस्य न्यायोचितं महत्वपूर्णं च कर्तव्यमस्ति। तथापि न्यायपीठेन विधिसम्मत प्रक्रियायाः पालनस्य आवश्यकता पुनः प्रतिपादिता। न्यायपीठेन निर्देशः प्रदत्तः यत् यावत् विदेशी न्यायाधिकरणैः एतेषां प्रकरणानां पुनः श्रवणं न क्रियते तावत् याचिकाकर्तृषु किमपि दण्डात्मक उपक्रमं न क्रियताम्। याचिकाकर्तृभिः विदेशी न्यायाधिकरणस्य आदेशाः प्रथमं गुवाहाटी उच्चन्यायालये ततः परं सर्वोच्च न्यायालये च प्रत्याहूताः। स्वीय भारतीय नागरिकतायाः समर्थनाय तैः 1979 वर्षात् प्राक्कालीनाः वंशपरम्परा सम्बद्धाः अभिलेखाः, मतदातृसूचयः, भूम्यभिलेखाश्च प्रमाणरूपेण प्रस्तुताः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य उत्तरप्रदेश प्रशासनेन निर्मिताय विशेषान्वेषणदलाय अयोध्यायाः श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरस्य प्राप्तदानस्य अभिशङ्कितदुरुपयोगस्य अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। सममेव न्यायालयेन अस्मिन् प्रकरणे अनुचितविनियोगस्य आरोपविषये केन्द्रीयान्वेषणविभागेन अन्वेषणस्य याचनां कुर्वतीषु याचिकासु केन्द्रप्रशासनाय, उत्तरप्रदेशप्रशासनाय तथा

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we shall be taking your calls on your market related queries. But please do remember, friends, that we do not address stock or company specific queries. Well, you may call us on the numbers, and the numbers are 233-1444, 233-10481 and 23717106. And of course, do not forget to add 011 as a prefix to these numbers, right? All right, I'm Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor Amrish Saxena.
1: Namaskar. मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. इस कार्यक्रम में हम ताज़ा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे. आज सोमवार है और हर एक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 233-1-4444 और 233-1-0481 और हमारा तीसरा नंबर है 237-1-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा.
0: And friends, let's begin with the headlines right away. In the Indian stock market, Sensex edges up 47 points, Nifty closes flat. India's retail inflation rises to 4.38% in June this year, and global crude oil prices rise. And friends,
1: aur hindi mein mukhya samachar. Gharelu share bazaron mein Sensex 47 ank bada, Nifty mein khas badlav nahi hua. देश की खुदरा मुद्रा स्फीति इस वर्ष जून में 4.38% बढ़ी और वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी दर्ज की गई.
0: And friends, before we move on in the program, let's have a disclaimer for you all. Well, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दबाव में रहे और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 47 अंक बढ़कर 77,616 पर बंद हुआ. निफ्टी 4 अंकों की बढ़त के साथ 24,211 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, हालांकि दोनों ही मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. दुनिया के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले, लेकिन बाद में शुरुआती गिरावट को दरकिनार करते हुए आगे बढ़े. दोपहर के समय बाजारों में सकारात्मक रुख दिखाई दिया, हालांकि वे एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए.
0: Benchmark domestic equity indices ended with minor gains today, reflecting a subdued trading session. The Sensex edged up 47 points to close at 77,616. The Nifty added 4 points to settle at 24,211. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 and small-cap 100 indices also ended on a flat note, though both managed to close with a slight positive bias. Earlier today, the benchmark indices opened with a gap down amid weak global cues. However, they recovered from the initial losses and steadily gained momentum. Around noon, the markets entered positive territory but traded in a narrow range thereafter, ending the session with only minor gains.
1: Sensex ki 30 mein se 18 companies mein giravat darj ki gayi. Kharab प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में

0: prepared to take the responsibility when you give some views or some opinion. You disown. हमारा कुछ जिम्मेदारी है, तुमको जैसा मरने मरो, मैं आपको.
1: All right, I think the voice was not too clear, but anyway, let's move on.
2: और एशिया और यूरोप के बाज़ारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के बाज़ारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 9% की गिरावट के साथ सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाला सूचकांक बन गया. बाज़ार की गिरावट रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाया गया और कारोबार 20 मिनट तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.1% और जापान का निकेई 1.9% तक गिरा. दूसरी ओर हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में लगभग 0.2% की तेजी दर्ज की गई. ताइवान का ताइएक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों ही सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहे. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी मिला जुला रुख देखने को मिला. अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक दोनों ही 0.2% आगे चल रहे थे, जबकि लंदन का फुटसी नकारात्मक रुझान के साथ स्थिर बना हुआ था. शशि जी, हालांकि मिक्स ट्रेंड हमें यूरोप और एशिया दोनों में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो ख़ास चीज़ हमारा ध्यान आकर्षित करती है, अगर दक्षिण कोरिया की हम बात करें जहां पर इतनी तेज़ गिरावट हमें देखने को मिली, मोटे तौर पर और बाज़ारों में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति एशिया में हमें नहीं दिखाई दे रही.
3: दक्षिण कोरिया की बात का जिक्र करना यहाँ पर ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया में एक या दो ऐसी कंपनियां थीं जिनके शेयरों में काफ़ी तेज़ उछाल आया था, और उसकी वजह से दक्षिण कोरिया के जो कहते हैं कि बाज़ार पूंजीकरण जो है वो काफ़ी आगे हो गया था, और ये कहा गया कि दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाज़ारों की स्थिति देखिए. लेकिन उस समय भी अगर हम लोग अगर उस बात को दोबारा याद करें तो उस समय हमने इस बात का ख़ास तौर पर जिक्र किया था कि दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो या ऐसे बाज़ार हो, इसमें एक या दो या तीन कंपनियां, चार कंपनियां जो हैं वो बाज़ार को ऊंचा ले जा रही हैं, जबकि हमारे यहाँ जो बाज़ार में स्थिति है कि हम एक विविध बाज़ार हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, और उन सभी क्षेत्रों का मिला जुला असर देखने को मिलता है. तो अगर एक लंबे समय की प्रवृत्ति की बात करें तो वो दक्षिण कोरिया हो या फिर ताइवान की बात करें या ऐसे बाज़ारों की बात करें, शायद वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, जबकि भारतीय बाज़ारों में हमें वो स्थिति देखने को मिलेगी, और वो बात आज काफ़ी तक जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है.
2: और यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज सोमवार है, और हर एक सोमवार की तरह हम श्रोताओं के प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं. श्रोताओं, आप हमसे फोन करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं इन नंबरों पर 2331444 और 2331 0481, और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें.
1: शिशिर, नोइंग द मार्केट्स एट द मोमेंट, एज वी सेड इट रोज बाय 47 पॉइंट्स नाउ एंड स्टिल द मार्केट्स आर वोलेटाइल, नो थैंक्स टू द वॉर सिचुएशन एंड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द स्टेट ऑफ हॉर्मोज एंड द एनर्जी थ्रेट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी. After seeing all this, is this the right time to invest if somebody wants to invest? What is your overall, how would you analyze? The newcomers should wait and watch, or somebody with a high risk appetite should plunge into the stock market? How would you explain that?
3: So you have mentioned various factors starting from war to crude oil. But one more factor needs to be added, and that is the monsoon. Which has much wider impact because almost our agrarian economy is depending upon this thing. So what I mean to say that at this moment, when any kind of investor who is say a beginning, who is a beginner or newcomer in the market, it would be better if we just wait for some more time, because the volatility is too much, uncertainty is at high level, and even if he wants to invest, the mutual fund route is much better. And mutual fund, not just in the equity one, I would say go on the diversified one, some part in equity, some part in debt, some part in the hybrid. That will give some more comfort. Entering into the market at this point of time, my advice would be it's not the good.

0: time.
1: I mean, don't put all your eggs in one basket, yeah, as they say. All right, we're now joined by Ramanathan from Chennai. Yes, sir, Ramanathan ji, please ask a question. Yeah.
2: Yes, good evening, Market Mundra.
1: Good evening, ji.
2: Yeah. See, I have two questions.
1: Yeah, sure.
2: One is, how is this dollar index calculated? And one more question is, with this inflation going up, can we see any interest rate hike, repo rate hikes?
3: The first question is about the dollar index. It is basically composition of six foreign currencies, and any kind of changes in those six currencies impact the dollar index. And dollar index gives basically indication about that what is happening in the dollar, what kind of a strength we are going to have. Coming to your second part of the second question, which is about the inflation and the interest rate. Basically, the 4% rate is something which is sometime it is giving an indication. Is it a time for rate hike? I think we will have to wait for at least two more months. So that is why the number which we have seen today is more than 4%. That means the median rate of targeted inflation rate has been breached, that 4%, after January 2025. Now the expectation is that for the next 2 or 3 months, it could be in the range bound manner, but depends upon that how the monsoon covers entire nation and what is the swing situation. So we are expecting that in the second half of the fiscal, there may be a rate hike, but that will depends upon that what kind of inflation we see in the month of August or September.
4: और महाराष्ट्र से हमारे श्रोता के शुक्ला लाइन पे हैं. शुक्ला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
5: नमस्कार सभी को. मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आज अभी भी गोल्ड का रेट इंग्लैंड में तय होता है इंडिया का भी, और गोल्ड और डॉलर में क्या संबंध है?
3: देखिए, गोल्ड के रेट की जहाँ तक हम लोग बात करें, कॉमेक्स के आधार पर जो है वो रेट लिया जाता है. और रहा सवाल कि डॉलर और उसके मुकाबले में क्या, देखिए डॉलर मजबूत होता है तो उसका जो है वो नकारात्मक असर हमें सोने को में देखने को मिलता है, और डॉलर कमजोर होता है तो सोने के भाव में तेजी आती है.
1: और अभी ना जॉइन बाय विशाल फ्रॉम दिल्ली. जी विशाल जी, सवाल पूछिए अपना.
6: मंत्री जी नमस्कार. जैसे मैं ये जानना चाहूंगा, 3-4 दिन से IT सेक्टर थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कोई आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं?
3: देखिए, आईटी सेक्टर में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बीते दिनों जो नतीजे आए हैं वो नतीजे अच्छे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि शायद आने वाले दिन भी अच्छे रहेंगे. उनका जो कहते हैं ना कि आउटलुक भी जो वो बता रहे हैं उसमें थोड़ी स्थिति बेहतर है. और अगर आप याद करिए तो जो हमारी देश की एक बड़ी आईटी कंपनी है, उनके चेयरमैन साहब ने ये भी बात कही थी कि जो भी हम AI की बात करते हैं, AI के लिए भी हमें HI और जो ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी. इसी तरीके से NVIDIA के अगर आप CEO की बात को याद करें तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो ट्रेडिशनल IT कंपनीज हैं उनकी ज़रूरत बनी रहेगी. तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके वजह से आप IT कंपनियों में तेज़ी देख रहे हैं. अब प्रश्न ये है कि आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी. देखिए, ये सब कुछ निर्भर करता है कि ये लड़ाई का जो माहौल है उसमें किस तरीके से सुधार होता है. अगर वो सुधार होता है, मांग बढ़ेगी, और उस मांग का फ़ायदा जो है वो IT कंपनियों को देखने को मिलेगा. तो अभी थोड़ा सा ये जो 1-2 महीने हैं थोड़े से अभी अनिश्चितता के समय में है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो लड़ाई अभी दोबारा शुरू हुई है वो लंबा ना खींचे, तो इसका फायदा जो है हमें IT सेक्टर्स में भी देखने को मिल सकता है.
1: ऑलराइट, वी जॉइंड बाय तरुण फ्रॉम गुरुग्राम. जी तरुण जी, सवाल पूछिए अपना. जी
7: गुड इवनिंग. माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर टेक ऑन द डिफेंस स्टॉक इवन द करंट सिचुएशन? And second part of the question is specifically with respect to Kochi Shipyard company's stock price.
3: Tarun, as a matter of policy, we cannot discuss name of any company. Any specific stock cannot be mentioned. But sector, you have asked about the defense sector. Of course, defense sector is doing well. And at this moment, I feel that defense sector will have a potential to give a better return.
1: All right, moving on. HCL Technologies today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June. The company's revenue increased by 13.9% on an annual basis to 34,579. The company's revenue grew by 1.76% on sequential basis. The company's net profit rose by 3% to 4,600.

0: 124 crore rupees on quarterly basis. The country's third largest IT services company also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. And
1: और चलते हैं अगली खबर की ओर. इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है. इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है. इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई. जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई. इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया. इस तरह इसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई. शिशिर, बहुत ही अच्छी खबर है जिस तरह से हमारा निर्यात बढ़ा है.
2: बिल्कुल, देखिए निर्यात का बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन एक चीज़ और भी देखिए कि आयात भी बढ़ा है और जिसका असर जो है वो हमारे व्यापार घाटे पर देखने को मिला है. लेकिन अभी के समय में हमें आयात में ये भी देखना चाहिए कि आयात किस चीज़ का बढ़ा है. अगर कच्चे माल, मशीन, इन सब चीज़ों का आयात बढ़ रहा है तो वो बुरी खबर नहीं है, बल्कि वो हमारे निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा. तो आयात बढ़ने को लेकर के जब कभी भी हम चर्चा करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि किन चीज़ों का आयात बढ़ा है. और यदि आयात में इस तरह के सामान हमें देखने को मिलते हैं तो उसको लेकर के हमें चिंता नहीं करनी चाहिए. हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसका असर एक सकारात्मक देखने
1: जी, जैसा आपने कहा श्री जी, अलग से हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन वस्तुओं में और सेवाओं में दोनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयात में भी 26% की वृद्धि हुई.
0: एंड गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क बाय एक्सपेंडिंग इट्स बास्केट बाय आउटसोर्सिंग फ्रॉम आई मीन बोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट.
2: सर्टेनली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ यू आर हैविंग मोर एंड मोर कैपिटल गुड्स in import, more and more API imports are there, that is good for us. So import is not a bad word. The thing is not what we are importing.
0: Right.
1: और दिल्ली से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे हैं. रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
3: सर मेरा ना क्वेश्चन नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में है. नेशनल सेविंग स्कीम NSS.
1: जी
3: सर, मैंने ना 91 में सर जी 45,000 सर जी पोस्ट ऑफिस में लगाए थे. तो सर अब वो पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अपने पैसे निकाल लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है. तो सर मेरा सर से क्वेश्चन ये हैगा कि सर जब मैं पैसा निकालूँ क्या ये टैक्सेबल सर होगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा सर? और सर ये बजट में ना सर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, किसी ने मुझे बताया कि ये गवर्नमेंट बोला ये आप निकालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर. सर मैं सर की ओपिनियन जानना चाहता हूँ सर. मैं
2: देखिए नेशनल सेविंग स्कीम, अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या जिसको हम लोग NSE के नाम से जानते हैं, वो अब उस रूप में है. आप अगर पैसा निकालते हैं वो टैक्स ऑलरेडी कट गया है. इसका जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ETE, यानी कि जब आप पैसा लगाते हैं उस समय आपको एक निश्चित रकम तक कर में छूट मिलती है. उसके बाद जो उस पर ब्याज जोड़ता जाता है वहाँ पर टैक्स कटता है. और जब आप पैसा निकालते हैं तो ऑलरेडी चूंकि टैक्स कट चुका है तो वो आपके ऊपर वो एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है.
0: ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल. जी शंकर जी, सवाल पूछिए.
4: नमस्ते मार्केट बाजार टीम. सर मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है, ना मार्केट से है ना फाइनेंस से है. मेरा सवाल सर ये कि हमारे यहाँ बहुत सारा विकास का काम हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में सीवर लाइन डल रही है, सड़कें बन रही है, बट द क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट अप टू द मार्क. ये बिकॉज ऑफ यू नो जो भी रीजन हो, L1 L2 के चक्कर में सबसे सस्ते को लिया जाता है और काम और सस्ता होता है. तो इसका क्या, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है?
0: Well, I think we can't take that question because we are limiting ourselves to anything which is related to the financial aspect of the country or the markets, right? So this is beyond our syllabus to be honest and to be precise. All right, let's move on with more news. India's retail inflation accelerated to 4.38% year on year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was moderately higher than the 3.93% recorded in May. Retail inflation continued to rise for the sixth consecutive month under the new Consumer Price Index CPI series. According to data released by the Ministry of Statistics and Programs

0: implementation. Inflation in rural areas edged up to 4.74%, while in urban regions it rose to 3.92%. The food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.32% last month, up from 4.78% in the preceding month. According to the data, the increase in inflation in the previous month was mainly attributed to rising prices in personal care, social protection, restaurants and accommodation services, food and beverages and intoxicants. Your comment on this?
1: See, one factor is that there is a complete pass-through of petrol diesel price hike, and that is being reflected in the inflation number. The second is, of course, precious metal, whether we talk about silver jewelry or whether we talk about gold, diamond and platinum jewelry. In fact, silver jewelry, the inflation rate is 133%, which is not a small number.
0: Absolutely.
1: And the good thing is that the vegetable prices, I mean, especially when we talk about onion and potato, they are in the disinflation. That means they are in the negative territory. But one of the ingredient of our thali, which is ginger, adrak.
0: Yes, yes.
1: That is very costly. Jeera. That's a cummins, that is also very costly. So some of the food items are costly, some of the food products are costly. So we have the pass-through, then we have the precious metal and some of the food items. So combination of all those three have resulted in the 4.3% of the inflation for the month of June.
0: And we know that there is likely to be less monsoon, you know, as is being predicted by the IMD.
1: That's a bit of a worry. Yeah, that
0: right?
1: is a concern, and that is what we are expecting, that the inflation will be over 4% in the coming months also.
2: Aur hamare shrota Deepak humse jud chuke hain. Deepak ji, namaskar. Bataiye kya puchna chahte hain?
3: Namaskar sir.
1: Namaskar.
2: Ji, sawal puchho.
3: सर, ये जैसे मार्केट में मैं ना पहले इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता था, निफ्टी और इन पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था, तो ये गैप अप और गैप डाउन को जो मैकेनिज्म है, ये मेरी समझ से बाहर है कि मतलब एक ही नाइट में सेंटीमेंट कैसे चेंज होता है. सुबह सुबह गैप अप होके, जैसे आज ही हुआ था, गैप डाउन होकर शाम तक गैप मतलब फिल हो गया था, तो इतनी जल्दी सेंटीमेंट कैसे चेंज होते हैं सर?
1: तकनीक में समय बहुत कम लगता है. तकनीक जो है वो सूचनाओं को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है. तो जब आप कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कि रात की घटनाएं, सुबह की घटनाएं असर करती हैं. लेकिन दोपहर के बाद अगर परिस्थितियां, मान लीजिए थोड़ी सी सकारात्मक खबरें आती हैं, कुछ क्षेत्र में अच्छी खबरें आती हैं, सरकार की तरफ से अच्छी खबरें आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका बदलाव देखने को मिलता है. तो इसका सीधा सीधा जवाब मैं इतना ही कहूँगा कि तकनीक की वजह से सूचनाओं का जो प्रवाह है, जिसमें तेजी आई है, उससे बाजार में भी जो है वो पल दो पल, जिसको कहते हैं, बदलाव देखने को मिलता है.
0: राइट. All right, let's talk about oil prices now. Well, global crude oil prices rose today after renewed military strikes between the United States and Iran reignited concerns over energy shipments through the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.4% up at $78.59 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% up at $73.89 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1% down at 1,42,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.3% lower at 2,20,140 rupees per kilogram a short while ago.
2: Aur multi commodity exchange mein August anubandh wala sona 1% ki giravat ke saath 1,42,066 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% की गिरावट के साथ 2,19,823 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. शशि जी, आप क्या कहना चाहेंगे सोने के मूल्य के बारे में?
1: देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महंगाई दर में चांदी की महंगाई दर और सोने की महंगाई दर कितनी है. लेकिन हकीकत यह है कि दैनिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सोने और चांदी दोनों में जो है गिरावट देख रहे हैं, और एक बहुत ही ऊंचे स्तर से गिरावट आई है क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हुआ है. तो वहां पर जो इतनी मजबूती आएगी उसका असर आपको यहां पर देखने को मिलेगा. और दूसरी बात यह भी है कि जो वैश्विक अनिश्चितता का दौर था, उसकी में कहा जाता था कि सोने के भाव बढ़ेंगे, लेकिन इस बार उल्टा रहा है. सोने में उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिली है. उसकी एक वजह यह भी है कि डॉलर की स्थिति अगर अलग रही है तो उसका असर आपके सोने पर पड़ा है.
2: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. शशि जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने प्रमुख खबरों पर

0: चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: Now the headlines again. Thank you, Shishir ji. Well, in the Indian stock market, Sensex edges up 47 points. Nifty closes flat. India's retail inflation rises to 4.38% in June this year, and global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So from all of us here, goodbye.
0: Namaskar.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया. इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा.
4: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है. और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है. और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है.
3: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी.
5: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ. इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा. ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा.
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है. नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया. इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी. एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया. उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की. श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया. श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं. भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया. दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की. विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की. बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई. अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है. इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई

0: चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। A Delhi court today convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and four others for the killing of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots. Additional Sessions Judge

0: தொடர்வது டெல்லி ஏஞ்சல் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा

0: कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि ये दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ये समझौता दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for business.

0: यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से

कराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग

0: मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए।

0: गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under-19 and Under-23 championships in

0: instance, Qatar and Oman. We want them to continue their efforts, and we do want that the United States and Iran sit down at the diplomatic table and try and resolve this conflict.
1: Also, I would like to understand from you that Prime Minister Narendra Modi concluded his three-nation tour last Saturday, and he visited Indonesia, Australia and New Zealand, and the countries where he visited, his trips were very successful. He had deep engagements with the leaders over there. So in the current geopolitical situation, how do you see India's diplomacy with the world, with the other countries?
0: India's diplomacy is based on the principle of strategic autonomy and multi-alignment. We do not want to align ourselves with any one particular side. We want to have good relations all around. And this is why Prime Minister Modi has been visiting a whole host of countries. And the effort on his part is to strengthen our relations with all these countries. Now, since you referred to his recent tour of Indonesia, Australia and New Zealand, let me mention that this is a very important arc of trust. And this arc is in a very important region, the Indo-Pacific region, where India's interests are being impacted adversely by Chinese expansionism. But at the same time, the interests of all these countries in the region, including, of course, Australia, Indonesia, and New Zealand, they are also being adversely impacted by Chinese policies. China has become a threat to supply chains. China wants to monopolize the resources that are available for its own good. But then that has an adverse impact on other countries. And that's why it's important that India strengthens its relations with the countries of the region, which is what we are trying to do. And it's not just in the eastern part of the Indo-Pacific region, but also in the western part. So India's relations with all the countries of the Indo-Pacific region are aimed at strengthening not only our bilateral relations, but also the maritime aspect, because we are keen to collaborate with all these countries in strengthening our cooperation in the maritime domain so that we are able to ward off any threats towards supply chains that are arising.
1: Ambassador Dayal, you gave us a very lucid explanation of the ongoing conflict, and you delved deep into the reasons behind it and the future that is going to be from this conflict henceforth. Thank you so much for sparing your valuable time and joining us for Spotlight tonight.
0: Thank you, Deeksha. Thank you so much for inviting.
2: You were listening to a discussion on West Asia crisis, evolving situation and global impact. The participants were Prabhu Dayal, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। अच्छा, नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद मैडम।
3: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331 04 81 23 71 11 7

0: 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
1: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं जैसे बावलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहाँ पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
2: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
1: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान देना दे सकता है सर?
1: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे
0: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
1: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में हैं। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके।
0: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर तो?
1: थैंक यू मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
0: जी,
1: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारे छतों पे अगर धूल मिट्टी है तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित, हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाएं।

0: सैंड ऑफकोर्स, ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ कैसी भूमि कैसी है, वहाँ का एक्विफर लेवल कैसा, उस पे निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूँ तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूँ तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही हो वे फिल्टर होके, ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हज़ार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहाँ पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए। जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित।
2: जी नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का, जिसे सरकार की तरफ से कुछ, जिसे कैसे अभी घर सुर घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में, जैसे सर अभी बता रहे थे, कि उसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
0: अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी, अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूँगा।
1: जी
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूँ तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहाँ के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जाम्पल दे सकता हूँ। नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी, करीब 500 घर हैं, वहाँ कम्युनिटी ने मिलके ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूँ तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी
0: मेरी जिम्मेदारी है, उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिक अधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है,
1: नहीं नहीं
0: बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो
1: जरूरी है।
0: जी, तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से। और जो मैंने बानस काठा का एग्जाम्पल दिया और जो अदर एग्जाम्पल, जी 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि

0: 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा,
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और उसके लिए भी प्रेरणा,
0: ये प्रेरणा है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
1: नमन,
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
1: जी,
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पर, और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया, फिर मैंने सैंड का ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम, इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है
1: जी,
0: वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो, इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। लॉन्ग आंसर, मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: उसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार रमाकांत जी।
0: नमस्कार
3: रमाकांत
0: जी। नमस्ते।
3: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड टूट दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
0: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है, और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनकलता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को

0: संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ।
1: भविष्य के लिए निवेश है,
0: भविष्य का बिल्कुल निवेश है। जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते हैं,
1: बच्चे डालते हैं,
0: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है।
1: हर बूंद कीमती है।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 2331048127171717, 2371710 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सहैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी की जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
0: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूँगा सिंपल है, कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मानसून से पहले एक बार सफाई कर दिए ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार
1: होए,
0: तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
1: उसका जो स्तर ऊपर
0: हो जाए।
1: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे JSJB जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली, उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी, जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को ख़त्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे वहाँ की जनता ने, वहाँ के क्राउड ने, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने, वहाँ की इंडस्ट्री ने, वहाँ के NGOs ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं।
1: ज्यादा बन गए,
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी लोग,
1: लोगों की भागीदारी बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई

0: भी कहते ना, कोई भी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाएं। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है
1: जी।
0: ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं तीन चार लोगों को देख सकता हूँ, जब हम अपने घर जाएं क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे।
1: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहाँ डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से ये शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर मेरा प्रश्न था जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग उससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छा रेस्पॉन्स है, इस तरह से हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर या कुछ संस्थाएं सरकारी प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं, हम क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली जो चीज होना तो इसको करा जा सकता है।
0: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं
1: जी,
0: उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में तो एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें, आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले हैं सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
0: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल

0: ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाएं, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
1: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भू जल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका ही पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है aarnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीक के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात $232 अरब से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात $73.45 अरब रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में $4.14 अरब से बढ़कर इस वर्ष जून में $4.93 अरब हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात $88.76 अरब होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान

0: द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियां, तटीय राडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत समेत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमले करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाज़ों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान के राडार ठिकानों को निशान बनाने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। जनहित याचिका में नागर विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक की मांग की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। 2024 मार्च को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है, जबकि 7 ने फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक हासिल किए। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि अंडर 19 में सभी 8 महिलाओं ने स्थान अपने पक्के किए। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन मात्र 186 रन पर सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 170 और भारत ने 285 रन बनाए थे। क्रांति गौर को 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that the teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Quirpa Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Minister said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. India's retail inflation accelerated to 4.38% year-on-year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was

0: home. According to the official X account of the Embassy of India in Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN979 and arrived in Mumbai. It added that the state governments of Andhra Pradesh, Kerala and Tamil Nadu will coordinate the transportation of mortal remains to their final destinations in the respective states. Expressing sincere gratitude to the Vietnamese authorities and the government, the embassy said that their prayers, efforts and presence provided strength in this extreme hour of profound grief. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. The United States and Iran have each claimed control of the Strait of Hormuz following a weekend of escalating attacks across West Asia, raising fresh concerns over regional security and efforts to revive diplomacy. The latest escalation began after Iran struck a container ship in the Strait of Hormuz off the coast of Oman yesterday. Since then, no commercial vessels have passed through the strategic waterway, a key route for global oil and gas shipments. Meanwhile, Iran in turn said it targeted U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait, as well as a radar installations in Oman. Indian boxers remained a strong force at the Asian Under-19 and Under-23 championships, with 16 of them advancing to the finals across men's and women's categories in Jakarta. In the Under-19 women's category, 8 boxers reached finals today. Earlier in the Under-23 women's category, 5 Indian boxers progressed to the finals. In the Under-23 men's category, 3 Indian boxers advanced to the finals. India also added 7 bronze medals from semi-final finishes. And in cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in one of women's test against host England at the Lords. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lords. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। भारत और जापान ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रनों से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस बीच श्री गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्वेरपो काबोलेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और

0: और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के तोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री कानो कोजी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एक रिपोर्ट।
1: वार्ता में पिछली बैठक के बाद रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में सैन्य आदान प्रदान, संयुक्त मुख्यालयों के बीच सहयोग, समुद्री सहयोग, रक्षा अभ्यास, क्षमता निर्माण, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से समुद्री प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत सहयोग की भी समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग के लगातार विस्तार का स्वागत किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की सराहना की। उन्होंने भारत जापान सामरिक और वैश्विक साझेदारी के अंतर्गत व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। इससे पहले रक्षा सचिव ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजमुनी से मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से शुभकामनाएं दी। दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। श्री बिरला ने कहा कि मुलाकात में संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने और भारत न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर बल दिया गया। कांगो में इबोला वायरस के बुंडीबुगियो प्रकार से बचाव के लिए विकसित नए टीके का जल्द ही ब्रिटेन में वयस्कों पर परीक्षण शुरू किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस टीके को विकसित कर रहे हैं। अब इसकी सुरक्षा और शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आकलन 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के 50 स्वस्थ वयस्कों पर किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 17 मई को प्रकोप घोषित होने के तुरंत बाद इबोला के टीके के विकास को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने लगभग 8 सप्ताह पहले इस टीके का विकास शुरू किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण भारतीय समय अनुसार कल रात 8:17 पर होगा। इसके लगभग 3.5 घंटे बाद ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ेगा। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा। एक रिपोर्ट।
2: अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमरीका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जल डमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुए

0: स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीरों को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाज ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि 7 ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक हासिल किए। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं, जबकि पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। भारत और जापान ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am R.S. Raghu with the World News. The headlines. India and US engaged for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce Minister Piyush Goyal. India and Japan reiterate commitment to promote a free, open and rules-based Indo-Pacific region. The US and Iran exchange fresh strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in West Asia region. In cricket, India script history beating England by 270 runs in first ever women's test at Lord's. And 16 Indian boxers enter finals of Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both countries. In a social media post, Mr. Goyal dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. We have a report.
2: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said he had a fantastic meeting with US Trade Representatives Jamieson Greer in New Delhi last month on India-US trade deal. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, the Commerce and Industry Minister today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business Carlos Guerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU Free Trade Agreement and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goyal is on a 5-day visit to Spain, Belgium and Finland. This is Saira Mujtaba for World News.
1: India and Japan today reiterated their commitment to promote a free, open and rules-based Indo-Pacific region. During the 8th Defense Policy Dialogue held at Tokyo in Japan, the two countries held comprehensive discussions on the prevailing regional and global security environment and exchanged views on issues of mutual interest. The Indian delegation was led by Defense Secretary Rajesh Kumar Singh and the Japanese delegation was led by Vice Minister of Defense for International Affairs, Kano Koji. The mortal remains of 15 Indian nationals who lost their lives in the tragic boat accident near Fuquoc Island.

0: This I come to the end of this edition of Western Music. It's time for news from Delhi in a short while. Stay tuned in.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए

0: 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goel said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goel said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods, and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal, South 24 Parganas district. In a social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. 15 fishermen went off for fishing from the Shankarpur Sea Harbour on 2nd of July on FB Ma Kali trawler. After 5th July connection,

0: boat accident in Vietnam's Phu Quoc Island have been brought back home. According to the official X account of the Embassy of India, Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN979 and arrived in Mumbai. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, today inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway. Before the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway, all these leaders inspected the expressway in Unnao. Later, they came back by the same expressway and participated in the function at Sainik School in Lucknow, where the projects worth 4,850 crore rupees were launched today, which includes inauguration of the expressway and four-lane construction of a part of Lucknow-Hardoi Highway, along with the laying of foundation stone of a flyover in Lucknow. In cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in one of women's test against host England at the Lords. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lords. Chasing a target of 457 runs, the hosts were all out for 186 in their second innings before lunch on day 4. And that is the end of this news bulletin.
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण.
2: नमस्कार एंड वेलकम टू मार्केट मंत्र. टुडे बीइंग मंडे वी शैल बी टेकिंग योर कॉल्स ऑन योर मार्केट रिलेटेड क्वेरीज, बट प्लीज डू रिमेंबर फ्रेंड्स दैट वी डू नॉट एड्रेस स्टॉक और कंपनी स्पेसिफिक क्वेरीज. वेल यू मे कॉल अस ऑन द नंबर्स एंड द नंबर्स आर 2331-4444, 2371-7106, and of course do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. All right, I'm Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor Amrish Saxena.
3: Namaskar. मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. इस कार्यक्रम में हम ताज़ा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे. आज सोमवार है और हर एक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 और 2331-0481, और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा.
2: And friends, let's begin with the headlines right away. In the Indian stock market, Sensex edges up 47 points, Nifty closes flat. India's retail inflation rises to 4.38% in June this year, and global crude oil prices rise. And friends,
3: aur hindi mein mukhya samachar. Gharelu share bazaron mein Sensex 47 ank bada, Nifty में खास बदलाव नहीं हुआ. देश की खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष जून में 4.38% बढ़ी और वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी दर्ज की गई.
2: And friends, before we move on in the program, let's have a disclaimer for you all. Well, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
3: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दबाव में रहे और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 47 अंक बढ़कर 77,616 पर बंद हुआ. निफ्टी 4 अंकों की बढ़त के साथ 24,211 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, हालांकि दोनों ही मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. दुनिया के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले, लेकिन बाद में शुरुआती गिरावट को दरकिनार करते हुए

0: देखने को कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि तकनीकी कंपनियों के शेयरों में अच्छी सुधार आई, वही विमानन बाजार की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें हमने गिरावट देखी, क्योंकि पश्चिम एशिया में अगर उथल पुथल होता है तो उसका असर हवाई ईंधन के ऊपर पड़ेगा, हवाई ईंधन के दाम के ऊपर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कई उड़ानें जो हैं वो दोबारा से रद्द होने की आशंका है, तो इन सब के बीच में विमानन सेक्टर में हमने देखा, विमानन क्षेत्र में हमने देखा कि थोड़ा सा मामला जो है वो बहुत ही थोड़ा नहीं बहुत ही कमजोर था। लेकिन एक अच्छी वही बात जो मैंने कहा कि थोड़ा सा जो हमें सुधार देखने को मिल रहा है वो तकनीकी क्षेत्र में मिल रहा है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत हम FMCG सेक्टर में भी जो है वो हम सुधार देख सकते हैं। लेकिन ये पूरे वीक की बात करें, पूरे सप्ताह की बात करें, तो बहुत ज्यादा कोई सुधार की उम्मीद जो है वो हमें नहीं दिख रही है।
1: Alright, now we're joined by Sitaraman from Mumbai. Yes, Sitaraman ji, please ask a question.
2: I tell you, I hear your program occasionally, but one thing I find that you are not prepared to take the responsibility when you give some views or some opinion. You disown. हमारा कुछ जिम्मेदारी नहीं, तुमको जैसा मर्जी मरो।
1: All right, I think the voice was not too clear, but anyway, let's move on.
3: एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 9% की गिरावट के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सूचकांक बन गया। बाजार की गिरावट रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाया गया और कारोबार 20 मिनट तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.1% और जापान का निकेई 1.9% तक गिरा। दूसरी ओर हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में लगभग 0.2% की तेजी दर्ज की गई। ताइवान का ताइएक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों ही सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहे। शशि जी, जो खास चीज हमारा ध्यान आकर्षित करती है, अगर दक्षिण कोरिया की हम बात करें जहां पर इतनी तेज गिरावट हमें देखने को मिली, मोटे तौर पर और बाजारों में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति एशिया में हमें नहीं दिखाई दे रही।
0: दक्षिण कोरिया की बात का जिक्र करना यहाँ पे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया में एक या दो ऐसी कंपनियां थी जिनके शेयरों में काफी तेज उछाल आया था, और उसकी वजह से दक्षिण कोरिया के जो कहते हैं कि बाजार पूंजीकरण जो है वो काफी आगे हो गया था, और ये कहा गया कि दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजारों की स्थिति देखिए। लेकिन उस समय भी अगर हम लोग अगर उस बात को दोबारा याद करें तो उस समय हमने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो, या ऐसे बाजार हो, इसमें एक या दो या तीन कंपनियां, चार कंपनियां जो है वो बाजार को ऊंचा ले जा रही हैं, जबकि हमारे यहाँ जो बाजार में स्थिति है कि हम एक विविध बाजार हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, और उन सभी क्षेत्रों का मिला जुला असर देखने को मिलता है। तो अगर एक लंबे समय की प्रवृत्ति की बात करें तो वो दक्षिण कोरिया हो या फिर ताइवान की बात करें या ऐसे बाजारों की बात करें, शायद वहां देखने को नहीं मिलेगा, जबकि भारतीय बाजारों में हमें वो स्थिति देखने को मिलेगी, और वो बात आज काफी हद तक जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है।
3: यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज सोमवार है, और हर एक सोमवार की तरह हम श्रोताओं के प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। श्रोताओं, आप हमसे फोन करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं इन नंबरों पर 2331444 और 2331-0481, और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का STD कोड 011 भी डायल करें।
1: शिशिर, नोइंग द मार्केट्स एट द मोमेंट, एज वी सेड इट रोज बाय 47 पॉइंट्स नाउ एंड स्टिल द मार्केट्स आर वोलेटाइल, नो थैंक्स टू द वॉर सिचुएशन एंड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द स्टेट ऑफ हॉर्मोज एंड द एनर्जी थ्रेट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, आफ्टर सीइंग ऑल दिस, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इफ somebody wants to invest? What is your overall, how would you analyze, the newcomers should wait and watch, or somebody with a high risk appetite should plunge into the stock market? How would you explain that?
0: So you have mentioned various factors starting from war to crude oil, but one more factor needs to be added, and that is the monsoon, which has much wider impact because almost

0: boost our pop, I mean, aggregate economy, depending upon this thing. So what I mean to say that at this moment, when any kind of investor who is, say, a beginning, who is a beginner or newcomer in the market, it would be better if we just wait for some more time, because the volatility is too much, uncertainty is at high level, and even if he wants to invest, the mutual fund route is much better. And mutual fund, not just on the equity one, I would say go on the diversified one. Some part in equity, some part in debt, some part in the hybrid. That will give some more comfort. Entering into the market at this point of time, my advice would be, it's not the good time.
1: I mean, don't put all your eggs in one basket, as they say. All right, we're now joined by Ramanathan from Chennai. Yes, Ramanathan ji, please ask a question. Yeah.
2: Yes, good evening, Mahakatmandra.
1: Good evening, ji.
2: Yeah. See, I have two questions.
1: Yeah, sure.
2: One is, how is this dollar index calculated? And one more question is, with this inflation going up, can we see any interest rate hike, repo rate hikes?
0: The first question is about the dollar index. It is basically composition of six foreign currencies, and any kind of changes in those six currencies impact the dollar index. And dollar index gives basically indication about that what is happening in the dollar, what kind of strength we are going to have. Coming to your second part of the second question, which is about the inflation and the interest rate. Basically, the 4% rate is something which is sometime it is giving an indication. Is it a time for rate hike? I think we will have to wait for at least two more months. So that is why the number which we have seen today is more than 4%. That means the median rate of targeted inflation rate has been breached, that 4%, after January 2025. Now the expectation is that for the next 2 or 3 months, it could be in the range bound manner, but depends upon that how the monsoon covers entire nation and what is the swing situation. So we are expecting that in the second half of the fiscal, there may be a rate hike, but that will depends upon that what kind of inflation we see in the month of August or September.
3: और महाराष्ट्र से हमारे श्रोता के शुक्ला लाइन पे हैं. शुक्ला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
4: नमस्कार सभी को. मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आज अभी भी गोल्ड का रेट इंग्लैंड में तय होता है इंडिया का भी, और गोल्ड और डॉलर में क्या संबंध है?
0: देखिए, गोल्ड के रेट की जहां तक हम लोग बात करें, कॉमेक्स के आधार पर जो है वो रेट लिया जाता है. और रहा सवाल कि डॉलर और उसके मुकाबले में क्या, देखिए डॉलर मजबूत होता है तो उसका जो है वो नकारात्मक असर हमें सोने को में देखने को मिलता है, और डॉलर कमजोर होता है तो सोने के भाव में तेजी आती है.
1: और वी आर जॉइन बाय विशाल फ्रॉम दिल्ली. जी विशाल जी, सवाल पूछिए.
5: नमस्कार. जैसे मैं ये जानना चाहूंगा, 3-4 दिन से आईटी सेक्टर थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कोई आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं?
0: देखिए, आईटी सेक्टर में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बीते दिनों जो नतीजे आए हैं वो नतीजे अच्छे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि शायद आने वाले दिन भी अच्छे रहेंगे. उनका जो कहते हैं ना कि आउटलुक भी जो वो बता रहे हैं, उसमें थोड़ी स्थिति बेहतर है. और अगर आप याद करिए तो जो हमारी देश की एक बड़ी आईटी कंपनी, उनके चेयरमैन साहब ने ये भी बात कही थी कि जो भी हम एआई की बात करते हैं, एआई के लिए भी हमें एचआई और जो ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी. इसी तरीके से एनविद्या के अगर आप सीईओ की बात को याद करें तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं उनकी जरूरत बनी रहेगी. तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके वजह से आप आईटी कंपनियों में तेजी देख रहे हैं. अब प्रश्न ये कि आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी, देखिए ये सब कुछ निर्भर करता है कि ये लड़ाई का जो माहौल है उसमें किस तरीके से सुधार होता है. अगर वो सुधार होता है, मांग बढ़ेगी, और उस मांग का फायदा जो है वो आईटी कंपनियों को देखने को मिलेगा. तो अभी थोड़ा सा ये जो 1-2 महीने है, थोड़े से अभी अनिश्चितता के समय में है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो लड़ाई अभी दोबारा शुरू हुई है वो लंबा ना खींचे, तो इसका फायदा जो है हमें आईटी सेक्टर्स में भी देखने को मिल सकता है.
1: और वी आर जॉइंड बाय तरुण फ्रॉम गुरुग्राम. जी तरुण जी, सवाल पूछिए अपना. जी
6: गुड इवनिंग. माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर टेक ऑन द डिफेंस स्टॉक इन द करंट सिचुएशन? And second part of the question is specifically with respect to Kochi Shipyard company's stock price.
0: Tarun, as a matter of policy, we cannot discuss name of

0: any company, any specific stock cannot be mentioned. But sector, you have asked about the defense sector. Of course, defense sector is doing well. And at this moment, I feel that defense sector will have a potential to give a better return.
1: All right, moving on. HCL Technologies today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June. The company's revenue increased by 13.9% on an annual basis to 34,579. The company's revenue grew by 1.76% on sequential basis. The company's net profit rose by 3% to 4,624 crore rupees on quarterly basis. The country's third largest IT services company also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. And
2: aur chalte hain agli khabar ki aur. Is varsh April se June ke beech Bharat ka kul niryat 232 arab Amerikan dollar se adhik hone ka anumaan hai. इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है. इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई. जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई. इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया. इस तरह इसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई. शिशिर, बहुत ही अच्छी खबर है जिस तरह से हमारा निर्यात बढ़ा है.
0: बिल्कुल, देखिए निर्यात का बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन एक चीज और भी देखिए कि आयात भी बढ़ा है और जिसका असर जो है वो हमारे व्यापार घाटे पर देखने को मिला है. लेकिन अभी के समय में हमें आयात में ये भी देखना चाहिए कि आयात किस चीज का बढ़ा है. अगर कच्चे माल, मशीन, इन सब चीजों का आयात बढ़ रहा है तो वो बुरी खबर नहीं है, बल्कि वो हमारे निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा. तो आयात बढ़ने को लेकर के जब कभी भी हम चर्चा करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि किन चीजों का आयात बढ़ा है. और यदि आयात में इस तरह के सामान हमें देखने को मिलते हैं तो उसको लेकर के हमें चिंता नहीं करनी चाहिए. हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसका असर एक सकारात्मक देखने
2: जी, जैसा आपने कहा श्री जी, अलग से हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन वस्तुओं में और सेवाओं में दोनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयात में भी 26% की वृद्धि हुई.
1: एंड गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क बाय एक्सपेंडिंग इट्स बास्केट बाय आउटसोर्सिंग फ्रॉम आई मीन बोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट.
0: सर्टेनली सर्टेनली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इफ यू आर हैविंग मोर एंड मोर कैपिटल गुड्स in import, more and more API imports are there, that is good for us. So import is not a bad word. The thing is not what we are importing.
1: Right.
2: और दिल्ली से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे है. रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
3: सर मेरा ना क्वेश्चन नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम NSS.
2: जी
3: सर, मैंने ना 91 में सर जी 45,000 सर जी पोस्टल में लगाए थे, तो सर अब वो पोस्टल वाले कह रहे हैं कि अपने पैसे निकाल लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है. तो सर मेरा सर से क्वेश्चन ये हैगा कि सर जब मैं पैसा निकालूँ क्या ये टैक्सेबल सर होगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा सर? और सर ये बजट में ना सर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, किसी ने मुझे बताया कि ये गवर्नमेंट बोला या आप निकालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर. सर मैं सर की ओपिनियन जानना चाहता हूँ सर. मैं
0: देखिए नेशनल सेविंग स्कीम, अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या जिसको हम लोग NSE के नाम से जानते हैं, वो अब उस रूप में है. आप अगर पैसा निकालते हैं वो टैक्स ऑलरेडी कट गया है. इसका जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ETE, यानी कि जब आप पैसा लगाते हैं उस समय आपको एक निश्चित रकम तक कर में छूट मिलती है. उसके बाद जो उस पर ब्याज जोड़ता जाता है वहां पर टैक्स कटता है. और जब आप पैसा निकालते हैं तो ऑलरेडी चूंकि टैक्स कट चुका है तो वो आपके ऊपर वो एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है.
1: ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल. जी शंकर जी, सवाल पूछिए.
4: नमस्ते मार्केट टीम. सर मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है, ना मार्केट से है ना फाइनेंस से है. मेरा सवाल सर ये कि हमारे यहाँ बहुत सारा विकास का काम हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में सीवर लाइन डल रही है, सड़कें बन रही है, बट द क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट अप टू द मार्क. ये बिकॉज ऑफ यू नो जो भी रीजन हो, L1 L2 के चक्कर में सबसे सस्ते को लिया.

0: चांदी की महंगाई दर और सोने की महंगाई दर कितनी है, लेकिन हकीकत यह है कि दैनिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सोने और चांदी दोनों में जो है गिरावट देख रहे हैं, और एक बहुत ही ऊंचे स्तर से गिरावट आई है क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हुआ है। तो वहां पर जो इतनी मजबूती आएगी उसका असर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह भी है कि जो वैश्विक अनिश्चितता का दौर था उसकी में कहा जाता था कि सोने के भाव बढ़ेंगे, लेकिन इस बार उल्टा रहा है, सोने में उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिली है। उसकी एक वजह यह भी है कि डॉलर की स्थिति अगर अलग रही है तो उसका असर आपके सोने पर पड़ा है।
1: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शशि जी से कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नाउ द हेडलाइंस अगेन, थैंक यू शशि जी। वेल, इन द इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एजेस अप 47 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस flat. India's retail inflation rises to 4.38% in June this year, and global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So from all of us here, goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும். செய்தியறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी. श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों. उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है. इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है. पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई. एक रिपोर्ट.
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है. इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई. जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई. इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई. मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है. ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है. अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक.
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है. इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा. अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए. अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है. वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया. वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं. भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया. दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी.

0: இதுவரை இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இணைய திரை இசைப்பாடல்கள் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் செய்தியறிக்கை டெல்லியிலிருந்து. அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी. श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों. उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है. इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है. पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई. एक रिपोर्ट.
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है. इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई. जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई. इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई. मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है. ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है. अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक.
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है. इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है. अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए. अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई. वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है. वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं. भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया. दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीरों को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था. तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया. हादसे में 9 मछुआरों

0: இதுவரை நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் இனி திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டுகள். தொடர்வது ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा और निराधार तथा भ्रामक बताया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी. श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो. उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है. इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है. पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है. पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है. इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है. अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए. अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई. वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं. भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन्ह सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया. दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी. भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे. वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे. अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे. अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा. ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 पूरे होने का प्रतीक है. मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है. इनमें सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी, कचरा बीनने वाले और मैला ढोने वाले शामिल हैं. पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने निजी विद्यालयों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके लागू होने से राज्य के सभी निजी विद्यालयों की फीस पर सख्त निगरानी होगी. नए प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी निजी विद्यालय सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक शैक्षणिक वर्ष में वार्षिक फीस और अन्य शुल्क में 5% से अधिक की बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा. जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है. अंडर 23 और अंडर 19 में 8-8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है. 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की. अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई. जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है. सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे. इसके साथ ही ये समाचार

0: இதுவரை நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சியில் ஆட்டுக்கார அலமேலு, கவிக்குயில், மீனவ நண்பன் ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் ஒலிக்க கேட்டீர்கள். நிறைவு பெற்றது இந்த நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर

साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान के वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। विजेताओं और उनके कार्यों का प्रदर्शन वेव्स 2027 के दौरान आयोजित क्रिएटोस्फेयर में किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर रहे हैं। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं

0: पैदा हो गई है। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविंद्र सदन में दिव्य कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और ओडिशा में बिजली के साथ तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक शांति, सुरक्षा और समतामूलक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का शांति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा

0: वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50 शांति मिशनों में करीब 3 लाख शांति सैनिक भेज चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 मिशनों में 4,300 से अधिक भारतीय कर्मी तैनात हैं। उन्होंने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज जल डमरू मध्य से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करेगा। साथ ही ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीका के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अमरीकी सेना को मदद देने वाले किसी भी देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर लागू करने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। 15 भारतीय पर्यटकों के शव स्वदेश लाए गए हैं। इन भारतीय पर्यटकों की वियतनाम के फुक्वोक द्वीप पर स्पीड बोट की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई पहुंचे। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अभी भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द 15 इंडियन टूरिस्ट्स हु वर किल्ड इन अ स्पीड बोट एक्सीडेंट ऑफ वियतनाम्स Phu Quoc Island have been brought back home. The Embassy of India in Vietnam has said in a social media post that mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight and arrived in Mumbai. A speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island in Vietnam on Friday, leaving 15 tourists dead. 16 survivors have also returned to India and one tourist remains hospitalized in Vietnam. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 persons still missing. The trawler had 15 fishermen on board. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks yesterday, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said India and the US teams are fully engaged for a trade

அன்பெண்ணும் அமுதூட்டி அவயக்க